FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की आश्विन माह की सातवीं तिथि तदनुसार 29 सितंबर 2026 सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

साथ में मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर

0: सेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य विनोबा भावे का कथन है, ज्ञानी वो है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे

परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 326। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला विविध भारती के खजाने से। इसके अंतर्गत गायक हफीज अहमद खान से बातचीत सुनिएगा प्रस्तुति छाया गांगुली की।

सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनिएगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महमूद पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा सुनिएगा। इसके अंतर्गत PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुनवाएंगे, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल सुनेंगे दिन में 12:05 से सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 से। सखी सहेली इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे से, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉयड के सितारे, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, तराने नए पुराने शाम 5:30 से।

शाम 6:30 से झरोखा, शाम 6:35 से सुनेगा संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनिएगा प्रश्न तो यही है, लेखन वृंदा मंजीत का, निर्देशन अजीमुद्दीन का। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए सुनवाएंगे रात 9 बजे से।

छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 बजे से। आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से सुनिएगा, और रंग तरंग रात 11 बजे से। आपको याद दिला दे, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर, जिसे आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 से और रात्रि 9:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 326।

रावण के मुख से सीता हरण तथा युद्ध का वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण अत्यंत दुखी हो गया। वह रावण को धिक्कारता है जो जगजननी का अपहरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। कहता है, अब भी यदि अभिमान त्याग कर वह श्री राम की शरण जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नारद मुनि से मिला ज्ञान वह रावण को दे देता, किंतु अब बहुत देर हो चुकी है, अतः वह भाई से गले मिलकर युद्ध में जाने को तैयार हो जाता है, जहां उसे समस्त पापों का हरण करने वाले कमल नयन श्रीराम के दर्शन होंगे। असंख्य घड़े मदिरा पान और भैंसों का भोजन करके वज्र गर्जना करता कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आ पहुंचा। वहां विभीषण उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपने अपमान और निष्कासन की कथा कह सुनाई। कुंभकर्ण ने छोटे भाई विभीषण का साधुवाद किया, फिर बोला, रावण पर काल सवार है, अब भला वह सदुपदेश क्या सुनेगा। धन्य है तू जो अपने सत्कर्म से राक्षस कुल का भूषण हो गया, किंतु अब मैं भी काल के वश में हूं, मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, अतः तू प्रभु के पास वापस लौट जा।

0: गीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, विविध भारती के खजाने से आज हम लाए हैं सहसवान घराने के गायक हाफिज अहमद खान से राम सिंह पवार की बातचीत।
2: खान साहब नमस्कार।
3: नमस्कार पवार साहब।
2: खान साहब आज आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है और
3: मुझे भी ऐसे ही मसरत हो रही है।
2: एक संगीत चर्चा हम लोग करेंगे।
3: जरूर
2: खान साहब, जैसा कि ज्ञात है जिला बदायूं यूपी के सहसवान कस्बे के नाम से इस घराने का नाम सहसवान घराना पड़ा।
3: जी हाँ।
2: तो इस घराने को सहसवान रामपुर घराना भी कहते हैं।
3: जी हाँ।
2: इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।
3: जी हाँ, ऐसा है कि इस कस्बे में यानी कि सहसवान में
2: जी
3: बहुत अच्छे अच्छे गायक हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम सहसवान घराना है। लेकिन चूंकि ये सारे कलाकार रामपुर दरबार में थे तो इस वास्ते इसका नाम सहसवान रामपुर घराना पड़ गया। क्योंकि जहाँ तक आपको तो मालूम है कि राजा और नवाब ये जितने भी गुजरे हैं ज़्यादातर उन्होंने कलाकारों की बड़ी सरपरस्ती की है और उनके आश्रय में ले रहकर हमारे कलाकारों ने यानी बहुत ही तरक्की जो है वो पाई है। तो इस लिहाज से ये सहसवान रामपुर घराना जो है ये कहलाता है।
2: जी खास साहब, जैसा कि अनुमान है या ख्याल है कि प्रारंभिक दिनों में इस घराने में ध्रुपद धमार गाया जाता था।
3: जी।
2: और शायद 17वीं-18वीं शताब्दी में ख्याल गायन की शुरुआत हुई।
3: जी हाँ, 17वीं शताब्दी में। और जहाँ तक के सहसवान घराने का ताल्लुक है, इसमें आला से आला ध्रुपद धमार के गायक भी पैदा हुए हैं और बीनकार भी पैदा हुए हैं। यानी ये सोचिए कि हमारे ख़ानदान के मतलब जो स्तंभ थे या इस घराने के स्तंभ थे वो थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और उनके नाना थे साहिबुद्दौला और कुतुबुद्दौला साहब। बहुत ऊंचे कलाकार थे और दोनों ही सितार में दक्ष थे और उन्होंने इस कला की बड़ी खिदमत की और नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में काफ़ी अरसे रहे और फिर वापस रामपुर आ गए।

0: सितार वादन के साथ साथ बीन वादन भी काफी
1: जी
0: प्रचलित हुआ है।
1: बीन वादन भी
0: जी,
1: क्योंकि उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के
0: जी
1: जो दो भाई थे, दो छोटे भाई उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब और उस्ताद अली हुसैन खान साहब, अपने ज़माने के उच्च कोटि के यानी वीणा वादक थे।
0: वीणा वादक थे। तो खास साहब, जैसे तो ये ध्रुपद धमार से शुरुआत हुई
1: जी
0: और ख्याल गायकी के क्षेत्र में भी बहुत महान कलाकार घराने में हुए हैं
1: जी,
0: तो रबाब सुरसिंगार भी काफ़ी वाद्यों का भी
1: जी हाँ, ऐसा है कि जहाँ तक रामपुर का बुनियादी जो घराना है उसमें सुरसिंगार और रबाब भी काफ़ी मशहूर हुआ और उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो थे रामपुर के, वो बहुत बड़े रबाब वादक थे
0: जी।
1: जी हाँ, तो इस तरह से इन साजों पर भी उनको बड़ा उबूर हासिल था।
0: तो वादन का गायन पर प्रभाव पड़ा अथवा गायन का भी वादन के साथ कुछ संबंध रहा है, इस बारे में
1: देखिए, ऐसा है कि गायन और वादन
0: जी
1: इन दोनों का चोली और दामन का साथ है, लेकिन असली बात तो ये है कि ये जो खुदा ने इंसान को एक साज दिया है जिसको हम गले का साज कहते हैं, तो समझिए कि गाना पहले आया
0: जी
1: और उसके बाद में वाद्यों का आविष्कार बाद में हुआ और इस तरह से गाने की छाया
0: जी
1: साजों पर पड़ती रही, लेकिन एक ऐसी मंजिल भी आई
0: हाँ
1: कि वाद्यों की छाया जो थी वो गायन पर पड़ने लगी।
0: मैं पूछना चाहता
1: जी हाँ, जो अभी जो आपने एक हवाला दिया है ना बीन का
0: जी,
1: तो हमारे घराने में चूंकि बीनकार भी हुए हैं तो बीन के बहुत ही खूबसूरत अंग जो हैं वो हमारे यहाँ की गायकी में सम्मिलित हैं।
0: तो बीन के जो अंग की जो खूबसूरती है
1: जी हाँ,
0: मेरे ख्याल आपका मतलब मींड से,
1: मींड है, मींड तो समझिए उसकी रूह है और अच्छा। मींड एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हमारे ज्योमेट्री में होता है ना रेखा गणित में स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, तो अब जैसे हम सुर दो कहेंगे सा गमा पा गमा गरे सा, ये अलग अलग नोट्स हैं या स्वर हैं, लेकिन अगर इनको हम मींड से कहेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत लहर आपके सामने उठेगी और उसका आप जैसे कि आवाज़ का चित्र बना सकते हैं।
0: अच्छा।
1: रे

0: तो ख्याल गायकी में
1: जी
0: बीन का जो ये अंग है यानी मींड
1: जी
0: हमारे यहाँ की गायकी में साफ झलकता है
1: जी हाँ, तो इससे गायन के सौंदर्य में वृद्धि हुई है
0: जी हाँ, ऐसा यानी मनहरण लगता है सुनने को, यानी जो हमारे यहाँ एक एस्थेटिक्स है
1: जी
0: सौंदर्य
1: जी
0: जिसको हम उर्दू में जमालियाती पहलू कहते हैं
1: जी,
0: तो एक तो इसका असर जो है, इस मींड का असर आपका दिल जो है वो मुतासिर होगा, लेकिन और जो सरगम वगैरह का सारी चीज़ें जो हैं उससे वो आपका दिमाग जो है वो प्रभावित होगा या उससे वो उसका रसास्वादन करेगा।
1: खास साहब, इस गायन शैली की और भी तो कई विशेषताएं हैं
0: जी हाँ,
1: जैसे गमक बहलावा
0: जी हाँ, बहलावा भी ख़ास है क्योंकि विलंबित और तान के दरमियान
1: जी
0: एक तरह से ये एक पुल समझिए, सेतु समझिए।
1: अच्छा,
0: और वह ऐसा है कि बहलावा का मतलब यह है कि बहलाना, जैसे बच्चों को बहलाया जाता है
1: जी,
0: तो सुरों को बहलाया जाता है, और इस तरह से बहलावा अगर आप सुन लें तो आप तैयार हो जाइए कि थोड़ी देर के बाद में तानों का सिलसिला जो है वो शुरू
1: होने वाला है।
0: अच्छा, आप कह

0: इसमें खास इस बहलावे में आपने देखा होगा कि जिस वक्त एक सुर से दूसरे सुर पे हम जाते हैं तो एक चीज़ का इस्तेमाल होता है जिसको हम समझिए हिक्का कहते हैं
1: जी।
0: हिक्का यानी सॉफ्ट जर्क। ये हिक्का है
1: जी।
0: तो इस तरह से मींड बहलावा हिक्का
1: जी।
0: और इसके अलावा इस घराने की एक विशेषता ये भी है क्योंकि इस घराने में टप्पा भी बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है।
1: अच्छा।
0: उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब ने बहुत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है, विश्व हृदय दिवस। हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ हृदय के लिए जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करना है। और इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम है डोंट मिस बीट, अर्थात एक भी धड़कन को नज़रअंदाज न करें। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि अपने हृदय के संकेतों को समझना और समय पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में हृदय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये लगातार काम करते हुए पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व पहुंचते हैं। हम सो रहे हों या जाग रहे हों, आराम कर रहे हों या काम कर रहे हों, हमारा हृदय लगातार अपना कार्य करता रहता है। इसलिए कहा जाता है, हृदय स्वस्थ है तो जीवन में ऊर्जा और उत्साह है। लेकिन आज की बदलती जीवन शैली में हृदय को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हृदय को प्रभावित करने वाले कई जोखिम कारक हैं, जैसे अस्वास्थ्यकर खान पान, बहुत अधिक नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी,

अधिक वजन या मोटापा, तंबाकू और धूम्रपान, अत्यधिक तनाव, पर्याप्त नींद न लेना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, इनमें से कई जोखिमों को स्वस्थ जीवन शैली और उचित चिकित्सा देखभाल से नियंत्रित किया जा सकता है।

श्रोताओं, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। हमें अपने भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में शामिल करना चाहिए। वहीं अत्यधिक तला भुना भोजन, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी और अत्यधिक वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि स्वाद के लिए खाया गया भोजन यदि लगातार असंतुलित हो तो भविष्य में स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि बहुत उपयोगी है। अपनी उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार तेज चाल से चलना, योग, साइकिल चलाना, तैराकी या अन्य उपयुक्त गतिविधियां की जा सकती है। हमें अपनी दिनचर्या में लंबे समय तक लगातार बैठे रहने की आदत को कम करना चाहिए। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक सामान्य अनुभव बन गया है। लगातार तनाव और खराब जीवन शैली स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए हमें पर्याप्त नींद, नियमित दिनचर्या, योग, प्राणायाम, मनोरंजन और परिवार के साथ समय बिताने जैसी स्वस्थ आदतों को अपनाना चाहिए। हृदय स्वास्थ्य के लिए तंबाकू का सेवन छोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम है। धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसलिए संदेश स्पष्ट है, तंबाकू को ना कहें, अपने दिल को हाँ कहें।

श्रोताओं, कई बार उच्च रक्तचाप, मधुमेह और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल शुरुआत में स्पष्ट लक्षण नहीं देते, इसलिए उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना उपयोगी है। यदि किसी व्यक्ति को सीने में दर्द या दबाव, सांस लेने में कठिनाई, अचानक अत्यधिक कमजोरी, ठंडा पसीना, चक्कर या असामान्य बेचैनी जैसी गंभीर लक्षण हो तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हृदय रोग केवल अधिक उम्र के लोगों को होता है, लेकिन हृदय स्वास्थ्य की देखभाल वास्तव में बचपन और युवावस्था से ही शुरू होनी चाहिए। आज की पीढ़ी यदि शुरुआत से ही संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और नशे से दूरी जैसी आदतें अपनाएगी तो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ जीवन शैली की चर्चा करते समय भोजन और व्यायाम की बात तो होती है, लेकिन नींद को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पर्याप्त और नियमित नींद शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। देर रात तक मोबाइल चलाना, अनियमित समय पर सोना और लगातार नींद पूरी न होना हमारी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में नियमित नींद को भी महत्व देना चाहिए।

श्रोताओं, अक्सर हृदय रोग को पुरुषों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन महिलाओं को भी हृदय स्वास्थ्य के प्रति उतना ही जागरूक होना चाहिए। महिलाओं में कुछ हृदय संबंधी समस्याओं के लक्षण अलग अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं, इसलिए महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य को परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं रखना चाहिए। अक्सर महिलाएं परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिंता करती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को प्राथमिक

प्राथमिकता नहीं देती। हमें ये सोच बदलनी होगी। परिवार की देखभाल करने वाली महिला की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। श्रोताओं, हृदय स्वास्थ्य केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। यदि परिवार में सभी लोग मिलकर स्वस्थ आदतें अपनाएं, तो स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना आसान हो जाता है। हम जीवन में धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इन सभी प्रयासों के बीच अपने स्वास्थ्य को भूल जाना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमारा स्वस्थ शरीर है और उसकी सबसे अनमोल धुन हमारे हृदय की धड़कन है। आइए इस विश्व हृदय दिवस पर हम यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं। एक भी धड़कन को नजरअंदाज ना करें, अपने दिल का ख्याल रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और हर धड़कन के साथ जीवन को बेहतर बनाएं। स्वस्थ हृदय स्वस्थ जीवन, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को विश्व हृदय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: श्रोताओं, आज हमने विश्व हृदय दिवस पर आपसे जो बातें की, उम्मीद है आप उसका अनुसरण अवश्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम से लेते हैं विदा। कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे यानी अनीता शर्मा को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल।
1: और देखो कब से हम कहते हैं सनम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। इस समय 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। आइए फिल्म संगीत का ये पहला गीत सुनिए नगीना फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे।

0: आज फिल्म का ये गीत था, आवाजें उदित नारायण अलका याग्निक की, गीत रचना समीर की और संगीत नदीम शर्मा का। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत जारी है, मिलते हैं छोटे से संदेश के बाद।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: युवानी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना। हेलो फर्म

0: इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युववाणी में। सुनते रहें एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
1: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जाने दुश्मन फिल्म का ये गीत था आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, गीत वर्मा मलिक का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: भरोसा फिल्म का ये गीत था, आवाज़ें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और इस गीत को संगीत से संवारा रवि ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है।
1: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर STD कोड 0144 अवश्य लगाएं।

हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।

हम आकाशो ने अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार प्रभात।

समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित तीन भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि

0: से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
3: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
4: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
2: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
5: हम है चुन्ना हल्दा, इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है, उससे हम लोग गाँव वाला को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
2: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91

0: हजार किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कि किशोरियों से गैंगरेप पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने

0: यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोक सत्य ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विद्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष सीबीएसई की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह व चित्रा सिंह की गायी गजलें।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। आइए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल।

जगजीत सिंह की गाई इसी गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय 8:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
1: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
1: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने एक कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
1: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
1: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
1: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
1: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय

0: मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
1: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था, उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
0: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
1: जी,
0: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
1: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
0: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
1: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
0: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
1: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
0: ओह,
1: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
1: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया।
1: जी,
0: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति K.R. नारायणन ने उनकी माता को यह पुरस्कार प्रदान किया।
1: जी,
0: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
1: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
0: श्रोताओं, मेघराज की कहानी केवल बहादुरी की नहीं बल्कि मित्रता और जिम्मेदारी की कहानी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा जीत जी, बालक मेघराज ने हमें दिखाया कि किसी दूसरे के जीवन को बचाने की भावना कितनी महान हो सकती है।
0: जी, कुछ जीवन लंबे नहीं होते, लेकिन उनके कर्म उन्हें अमर बना देते हैं। बालक मेघराज केवल 13 वर्ष जिया, लेकिन उसने अपने छोटे से जीवन में ऐसा काम किया जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी साहसी बालक मेघराज के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे, गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
3: हैं? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
4: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया।

0: समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
1: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
0: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
1: बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
0: बीरबल ने उत्तर दिया,
2: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
0: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
4: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह?
3: हाँ।
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: लेकिन लड़ाई के मैदान

0: में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
1: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा।
0: हाँ,
1: अरे अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: हमें हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
0: चलो जल्दी चलो।
1: हाँ
0: चलो, बता देते हैं।
1: जय हिंद सर।
2: जय हिंद राम सिंह।
1: सर सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
2: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
1: जी सर।
2: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
0: जी सर।
2: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम है, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
1: जी सर।
2: जय हिंद।
1: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो, हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर!

0: பண்ணு.
1: साहब साहब वो देखिए घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं.
0: फतेह सिंह अभी उन्हें और पास आने दो. जब पास आ जाएं तो हथगोलों का इस्तेमाल करो.
1: जी सर.
2: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे. उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया. उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की.
3: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए. उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे. भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे. चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा.
2: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे. उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया.
4: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो. मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का. फायर. हुकम सिंह.
1: जी सर.
4: एलएमजी सामान पास में छोड़. फायर कर. राइट साइड पे फायर कर.
3: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते. गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे. अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं. चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे. 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया. उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए.
2: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे.
5: अरे साहब आप तो बहुत घायल हो गए हैं. कितना खून बह रहा है. आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं.
0: राम सिंह मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ. मेरे लिए एक मशीन गन लाओ. मशीन गन लाओ.
5: जी साहब अभी लाया. अरे हुकुम भाई जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना.
0: अच्छा.
1: सर यही मशीन गन.
0: हुकुम सिंह एक काम करो.
1: जी.
0: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो.
1: जी सर.
0: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को.
1: जल्दी करो.
0: जी सर.
1: बांध दिया सर.
0: ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ.
1: हाँ सर. बांध दिया.
0: इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो. जल्दी टाइट करके खींच करके खींच के इस तरफ लेके. हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल.
1: जी सर.
0: भारत माता की जय. भारत माता की जय.
3: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी. लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे. कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए.
5: संभल कर, संभल कर.
0: सर, सब यहां सर टिका लीजिए.
5: सर, ऐसे सर.
6: कालिका माता की.
2: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें. मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था.
6: छोड़ना नहीं. आखिरी सांस. फायर, फायर.

0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
1: साथी हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
2: साहब,
1: तुम लोग आगे निकलो।
2: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
1: साहब, नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
2: नहीं साहब।
1: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
2: नहीं साहब, नहीं,
1: आदेश, इट्स एन ऑर्डर
2: सर।
1: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
3: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
0: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
4: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
0: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
3: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांगला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूँ।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के

0: असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 600 नए सब सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत अगले 5 वर्षों के लिए नई कार्य योजना पर काम किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर की। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश हुई, आज पूर्वी जिलों में हल्की बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में हर 10 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से 600 नए सब सेंटर स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कल जयपुर में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक में इस दिशा में कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में 50,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। उन्होंने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जरूरत के अनुसार चिकित्सकों और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी चिकित्सा संस्थानों में 3 महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित निगरानी के लिए भी कहा गया। बैठक के दौरान मौसमी बीमारियों के मद्देनजर दवाओं और जाँच सुविधाओं की भी नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। राजस्थान और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत अगले 5 वर्षों के लिए नई कार्य योजना पर काम किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में डेनमार्क के राजदूत रास्मस अबेल्डगार्ड क्रिस्टेंसन के साथ बैठक के दौरान बताया कि वर्ष 2020 में स्थापित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पहला 5 वर्षीय कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने जा रहा है। इस उपलब्धि को देखते हुए अब नए एक्शन प्लान पर काम करने की तैयारी है। बैठक में ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और नदी पुनर्जीवन के क्षेत्रों में डेनमार्क के अनुभवों का लाभ लेने पर सहमति बनी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में साझेदारी मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। शहरी विकास और जलापूर्ति की निगरानी में GIS और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा, झालावाड़ और अजमेर के किशनगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री कोटा में एक निजी ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद झालावाड़ के कोलाना में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बाद में किशनगढ़ पहुंचेंगे और वहां भाजपा कार्यकर्ताओं बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।

0: प्रदेश के शिक्षा से जुड़े दो नवाचारों खुशी शाला खुद की खोज और एआई आधारित दक्षता आकलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच शिखर सम्मेलन में दोनों नवाचारों में तकनीक के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थी केंद्रित प्रयासों के लिए ये सम्मान मिला है। खुशी शाला खुद की खोज विद्यार्थियों में आत्म जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक कक्षा वातावरण पर केंद्रित है, जबकि एआई आधारित दक्षता आकलन से विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति का आकलन कर सुधारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाया जा रहा है। कल शासन सचिवालय में राजेश यादव और राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने दोनों पुरस्कारों के सम्मान पत्र मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को भेंट किए। देश में मोटे अनाज यानी श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 से 2026-2027 की अवधि के लिए केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपए के खर्च के साथ PLISMBP प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: केंद्र सरकार ने मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने के बाद श्री अन्न को लेकर वैश्विक जागरूकता बढ़ी है। वहीं मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया दूर करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार श्री अन्न अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। साथ ही फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के माध्यम से मिलेट आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगातार वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी भी दी जा रही है। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने ऑडिट वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। अब आकलन वर्ष 2026-2027 के लिए ऐसे करदाता 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। ये छूट आयकर कानून के तहत ऑडिट के लिए निर्धारित करदाताओं को मिलेगी। CBDT ने कहा है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लंबित ई चालानों की राशि वसूलने के लिए बिजली बिल के साथ चालान की राशि जोड़ने की व्यवस्था पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इससे बकाया चालानों की वसूली बेहतर हो सकती है। न्यायालय ने लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन के पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया। पश्चिमी राजस्थान में मॉनसून की विदाई के बीच जैसलमेर जिले में प्रवासी पक्षियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है। सुदूर इलाकों से कुर्जा पक्षियों के दल यहां पहुंचे हैं और अठखेलियां करते नजर आ रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्पोकन क्षेत्र के खेतोराई गाँव स्थित लीला राई तालाब पर कुर्जा पहली बार अटखेलियां करती नजर आई है। तालाब पर कुर्जा के पड़ाव डालने से स्थानीय ग्रामीणों और पक्षी प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला है। कुर्जा दुनिया में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले प्रवासी पक्षियों में शुमार है। अत्यधिक बर्फबारी और हार्ड कंपाने वाली ठंड से बचने के लिए ये पक्षी मंगोलिया, चीन और मध्य एशिया से दक्षिण की ओर रुख करते हैं। राजस्थान के खुले मैदान, नमी और शांत जल स्रोत इनके प्रवास के लिए सबसे मुफीद ठिकाना साबित होते हैं। मानसून के बाद तालाबों में लबालब पानी और कीट पतंगों व चुगे की प्रचुरता इनके लिए अनुकूल माहौल तैयार कर देती है। मनुष्य

0: आकाशवाणी समाचार जैसलमेर।
1: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल कई इलाकों में बारिश हुई। राजधानी जयपुर में कल शाम तेज हवाओं के साथ करीब आधा घंटा बरसात हुई। शहर में करीब एक इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल गरजने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और हल्की से मध्यम बारिश हुई। पुरानी चुंगी और चौमू में ओले भी गिरे। वहीं सीकर के लोसल में सबसे अधिक 47 मिलीमीटर बारिश हुई। दौसा, चूरू, डीडवाना, हनुमानगढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर और टोंक में भी बरसात के बाद मौसम सुहावना हो गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज से धीरे धीरे कम होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हर 10 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 600 नए सब सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत अगले 5 वर्षों के लिए नई कार्य योजना पर काम किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 21 नवंबर की। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश हुई। आज पूर्वी जिलों में हल्की बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला।
3: जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
4: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गांव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व UGC सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद और नमस्कार।
4: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए। और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
6: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने

0: का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में, सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था, और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th एडिशन जो है वो January 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज हो रही है, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
2: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया, और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयुषर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा

0: उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉप आउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय, इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉप आउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
2: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद PhD उसी फील्ड में लेते हो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल, वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में, मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फॉरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही है, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति

0: विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
1: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपने तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं। और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था, देयर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट NDA, तो वहां भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं, पहले नहीं थे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई है, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई है और इनकी संख्या जो बड़ी है, केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि UGC से संबद्ध रही हूँ। 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थीं, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ द नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय, यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं। एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कॉलेजेस को भी ऑटोनमस बनाने का प्रयास किया गया है और जब मैं UGC में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो उनको ऑटोनमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो। जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं, उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं। इनके अपने तरीके भी हैं, एडमिशंस क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है, पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है। और जो एक हमारे यहाँ गैप, जिसकी आपने बात की कि मैं BA हूँ, मैं MA हूँ, मैं PhD भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उदाहरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से। अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है। दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और UGC के माध्यम से भी कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके। यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है और इसमें बहुविषयक और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ दी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए और IITs का नंबर बढ़ाया गया है, IIMs का नंबर बढ़ाया गया है, NITs बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत सारे खोले गए, ICERs बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

0: में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है।
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी

0: भाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
1: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पर आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा, और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए। सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी, जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है, अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका, ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर की, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है, अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में हैं, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूअसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है, जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
0: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले 2 दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
2: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें, तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो 2 मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में इतना ज्यादा रेगुलेशन था, जैसे लॉ एजुकेशन में भी है लगभग। तो यहाँ संरचनात्मक सुधार तो ये हुआ कि 4 स्वायत्त बोर्ड बना दिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट

0: ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि एथिक्स भी उस रिसर्च के लिए भी आवश्यक है और शिक्षा के लिए भी आवश्यक है. और इसके साथ साथ शिक्षक संकाय से की योग्यता से जुड़े हुए जो नियम थे उनको भी अपडेट किया गया है. और वहीं से जो सुधार आरंभ हुए तो मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की पारदर्शी विधि प्रक्रिया, यानी आप नीट के माध्यम से एकीकृत हो गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है. एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट. तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी. तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है. एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे.
1: भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, पीएम KVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में. और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है. स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है. और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं. इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में, इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है. और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था. दूसरा, इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन. और तीसरा, हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना. तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है. और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कंपीट नहीं कर सकते. तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे. तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं. और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम जरूर हो, एक एटलीस्ट हो. 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स, एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा. सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी इस स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को, इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है. तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है. और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स.
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी. परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो दो दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है. टीवी ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए. घर में शोर शराबा नहीं होता था. लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते हैं, खुद उनके अभिभावकों को बताते हैं, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं. इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस

0: पेरेंट्स पे बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
1: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूँ, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, नौवां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है,
2: क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो, तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है, खोजने नहीं पड़ते पर उसको प्राप्त कर सकेंगे।
0: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
3: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को ये भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीले देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सके। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो बहुत रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
0: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
3: जी, बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और

0: यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला। हम आकाशवाणी अलवर के सर इसका चैनल से बोल रहे हैं FM 103.1 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
1: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, नहीं, बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
5: महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और एक और खास विषय है IVF।
6: जी,
5: ये क्या है इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे।
6: जरूर।
5: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं?
6: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक। तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को, जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है।
5: अच्छा।
6: यस, सो ये एक चेंज मैंने देखा है। दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है, कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल। तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती हैं लेकिन बच्चा लेट करती हैं, या लेट करती हैं और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है। तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20 साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो PCOD जो है या PCOS या अभी PMOS हम जो बोलते हैं वो काफी बढ़ चुका है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है ये एक काफी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है। PCOD में ये है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है।
5: अच्छा,
6: ये पहले नहीं था। हाँ। तो ये

0: अभी मतलब जो
1: बहुत बड़ी
0: समस्या है, तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या पीसीओडी, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है, तो वुमेन काफी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं, तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है, तो शी शुड टेक हेल्प। एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं।
0: जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं, तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में। और सेकेंडली जो थकावट है, ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका। अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए। तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है, बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस, जैसे थायराइड हो जाना, तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब, तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए। और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इश्यू है, तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच
1: संभावना हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए,
0: जरूर
1: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए।
0: डेफिनेटली,
1: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना है।
0: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है।
1: जी जी।
0: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए।
1: बिल्कुल। और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है। यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं। तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले।
0: जी, तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट।
1: अरे वाह, कौन सा सुनाई बताए?
0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
1: फिल्म चिराग का गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
1: जी।
0: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
1: जी,
0: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
1: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है, और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में महावारी डिले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
0: जी।
1: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो निकल पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
0: अच्छा,
1: यस। तो सीवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
0: लक्षण है
1: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
0: हो सकता है। तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
1: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसी होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैनॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो

0: स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज,
1: बिल्कुल,
0: एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है. तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल. तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है.
1: जी, तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने.
0: जी, और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो.
1: अच्छा.
0: देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली हैं बट फिर भी वो पीसीओ है. तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना, ये. एंड थर्ड, सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है. जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है. यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है. तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है. तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है. तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही
1: जरूरी है. बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण में तो खास तौर से कि गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है.
0: जी, जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं. डॉक्टर साहिब, आप पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली. अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओएस नहीं बोलते हैं, हम पीएमओएस बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण, या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स, वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है. तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं. तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है.
1: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से महिलाओं को
0: रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड,
1: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं
0: जी,
1: है. और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने आते हैं. आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है. तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला मां नहीं बन सकती? ऐसी कोई धारणा?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है, जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से. इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो. यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में. तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है. यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं. ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
1: बदलते हैं.
0: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना. अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ, लड़कियां 1, 2, 3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8, 9, 10 बजे के पहले उठती नहीं है. तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है. बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी

0: कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन।
1: बिल्कुल।
0: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9:30-10।
1: अच्छा
0: जी,
1: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं।
0: यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
1: हाँ।
0: तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
1: नहीं
0: है
1: आती।
0: और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12-1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रेट होने लगता है जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है।
1: अच्छा।
0: इसलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना यानी अर्ली डिनर, जैसे 7:30-8 o'clock यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10-10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
1: नहीं होता है,
0: इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है। और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का।
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना। और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर सकते हैं।
0: 100%
1: डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
0: आज फिर जीने की तमन्ना।

0: साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock तक खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला,
0: मिला नहीं है।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले। और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज्यादा कार्ब्स रहते हैं उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं। तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं।
0: ठीक,
1: तो जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होती है, तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है। वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलोंग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलेड, यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक। तो प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक, जो मेन क्रिमिनल, मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है, वो ना हो। तो उसके लिए लंच में आप सैलेड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें। सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलोंग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चिल्ला ले लिया या उस तरह का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को नहीं होने के लिए।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए। लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए, उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है। तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी, ये सब इसका सेवन, ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है और छान कर
1: बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये

0: वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना हाँ। चलो कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना, तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाएगी,
1: नहीं खाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो

0: तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाए,
1: नहीं खाएंगे जी। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं
0: जी,
1: तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
0: डेफिनेटली, मतलब और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए
1: जी,
0: भी
1: जी।
0: मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है,
1: कम हो जाता है। और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
0: 100%
1: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का,
0: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है, प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस yes, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है।
0: सो इट्स अलग अलग शैली में,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 डेज
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है, तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: जल्दी
1: होने लगता है। तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेकर बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कंप्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं जब पीरियड शुरू हो रहा है, दैट मीन्स अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
0: बहुत
1: जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताएं, लेकिन अभी जो एनवायरमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
0: बताते ही हैं,
1: लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
1: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है, तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना की वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया, फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली एनीमिक हो जाएगी उसकी। और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है, तो
0: ये भी चिंता का विषय हो जाता है।
1: काफी बार मदर्स आती हैं
0: कि क्या बात है अगले महीने को समय पर पीरियड्स नहीं आए।
1: जी जी जी,
0: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी।
1: यस, उनको

0: डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में।
1: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा छोटी बच्ची को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं इरेगुलर्स भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़कियां तो रोने भी लग जाती है, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम दो चार होते हैं। तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
0: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
1: अलग अलग होती है,
0: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्चे, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके एक डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर्स लें, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज की जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है, तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है।
1: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
0: जी
1: बताइए।
0: दिल है छोटा सा छोटी सी आशा।
1: आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसे आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चली गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है,
1: जी जी,
0: तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमिन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सरफेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ MRI, मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट,
0: जरूरी है। यस, इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं। यस,
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है, ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, या जलन होना, या असामान्य स्राव, ज्यादा स्राव होता है, ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है, और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
1: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज जो लुकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले।
0: अच्छा।
1: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है। तो अगर व्हाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड्स, मतलब मिड साइकिल में है। बट अगर बहुत बहुत बास आ रही,

0: या बहुत यस यस बदबू आना या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
0: जी डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर।
1: अच्छा, जो एक आम समस्या है।
0: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे। मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है खास करके विलेजेस में।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी,
0: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है
1: जाना।
0: और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है।
1: जी, जी, तरह की जीजा क्या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं
0: जी,
1: ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता
0: जी। बिल्कुल।
1: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का
0: जी,
1: कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं। ये भी एक आम समस्या की,
0: ये बहुत ही आम है,
1: आम समस्या है।
0: यस,
1: तो ये एक सामान्य है या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
0: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ, ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है, लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस बोलते हैं फाइब्रॉइड्स। तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है, यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के। तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक। अगर ये सिम्टम्स हैं तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं।
1: अच्छा।
0: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए। ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है। नो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स,
1: कहाँ में है,
0: कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है।
1: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है?
0: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी, जैसे हम कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट, मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है। वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है, अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं।
1: इसलिए सचेत हो जाना चाहिए और जैसे ही हमें लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसका
0: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है, यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी यू नो 1.5 महीना 2 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का।
1: जी, तो एक गंभीर समस्या बन सकती
0: बन सकती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है
1: नहीं।
0: तो डरना नहीं है।
1: हाँ, इलाज संभव है इसका।
0: यस, इलाज संभव है और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है, हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: जी
1: बताइए।
0: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे,
1: बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़।

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना? बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
4: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

0: ये आवाज़ें थी उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की, शायर नसीम रिफत, संगीत ललित का और एल्बम आगोश।
1: एक विलक्षण गायक।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी आशा, इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के।

0: तरंग।
1: पिनाज मसानी की आवाज है, शायर है गालिब, संगीत मधुरानी का एल्बम आपकी बज्म में।

लीजिए अब सुनिए साधना सरगम और उत्कर्ष शर्मा की आवाजें, लता विनोद नोवाल का लिखा हुआ गाना, संगीत है गोविंद बत्री का।

रंग तिरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाजों में। कुणाल वर्मा का लिखा हुआ गाना, पायल देव का संगीत, एल्बम का नाम है दिल लौटा दो।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत आपने सुना, दिल झूम झूम नाचे, इस एल्बम का गाना, गीत और संगीत ललित सेन का। इसी के साथ आज का रंग तरंग ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती है दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंचा।

0: पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारादीप बंदरगाह दल के त्वरित संयुक्त बचाव के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत के बंदरगाह हर समय पूर्ण समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओडिशा के पारादीप तट के पास जहाज लगभग 9000 मीट्रिक टन पाम ऑयल ले जा रहा था और उसमें 23 चालक दल के सदस्य सवार थे। रविवार सुबह मुख्य इंजन के फेल होने और गिट्टी टैंक में तेजी से पानी भरने के कारण जहाज एक तरफ झुक गया, जिसके बाद जहाज ने आपातकालीन संकट कॉल जारी की थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की ये पहली बैठक है। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 257 अंक गिरकर 72,514 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: दिल शब्द के गाने, आज विश्व हृदय दिवस है तो दिल शब्द के गाने। 24 घंटे इस फिल्म का ये पहला गाना आशा भोसले और तलत महमूद की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं, संगीत है बिपिन बाबुल का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर।
1: 2000 साल
0: जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती है दिल की
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
4: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आज विश्व हृदय दिवस पर दिल शब्द के गाने आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आईना फिल्म का ये गाना, समीर के बोल, दिलीप सेन समीर सेन का संगीत।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं FM 103.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं।

0: डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के

शकील बदायूनी का लिखा और सी रामचंद्र का संगीतबद्ध किया। ये गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम जिंदगी और मौत।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं अमरदीप फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया श्री रामचंद्र ने।

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: बहुत बहुत रवि तालियां उनके लिए।
1: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए अब सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: वाह वाह प्रभात वाह, बहुत रवि तालियां उनके लिए।
1: आकाश दीप फिल्म का गाना लीजिए अब सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया ये गाना आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम आन।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: आंधी और तूफान इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फारूक कैसर के बोल, संगीत है रॉबिन बनर्जी का।

आया मैं, दिल आया मैं बचा के पंजाब से। कितना प्यार देखो मुझको जनाब।

मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, अनिल विश्वास का संगीत, फिल्म का नाम आराम।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए अलबेला फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और इसकी धुन बनाई श्री रामचंद्र ने।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवाते हैं तलत महमूद की आवाज में आरजू फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आस का पंछी। इस फिल्म से सुबीर सेन की आवाज, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 5 नए स्थल और श्रृंखला तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे भारत के स्थलों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। नवनिर्मित स्थलों में बाघ गुफा चित्रों की बौद्ध भित्ति चित्रकारी, चंबल घाटी के मंदिर समूह, गुप्त काल की उदयगिरी गुफाएं और गिन्नौरगढ़ की जनजातीय विरासत शामिल है। इसमें सत्याग्रह स्थल भी शामिल है, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने वाला श्रृंखला श्रेणी का अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये नए स्थल भारत की विरासत की असाधारण विविधता को दर्शाते हैं। श्री शेखावत ने कहा कि ये प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की सभ्यतागत विरासत को वैश्विक

वैश्विक मंच पर संरक्षित, सुरक्षित और प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा में स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बूंदी और कोटा के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री झालावाड़ के कोलाना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। शाम को श्री शर्मा का अजमेर के किशनगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। अध्यक्ष सहित 6 पदों के लिए हो रहे चुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के बाद आज दोपहर में मतगणना की जाएगी। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने RCA चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मतगणना के बाद चुनाव परिणाम सील बंद लिफाफे में रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने ये आदेश महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। चुनाव के लिए कुल 30 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले कोई भारतीय महिला ट्रैप या स्केट निशानेबाज एशियाई खेलों में व्यक्तिगत पदक नहीं जीत सकी थी। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र के भारू गांव में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा और पोषण अभियान का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार खेचर ने कहा कि बच्चों के विकास और अच्छे संस्कारों की नींव बचपन में रखी जाती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सावित्री कृष्णिया ने आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषाहार वितरण के साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास और शाला पूर्व शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी, गोद भराई, अन्नप्राशन और प्रवेश उत्सव की रस्में भी हुई। जयपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 575 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां दी गई हैं। ये निर्णय जयपुर विकास प्राधिकरण की PWC की बैठक में लिया गया। JDA आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में एलिवेटेड रोड, जल निकासी, फुटपाथ और सेक्टर रोड सहित कई कार्यों को मंजूरी दी गई। गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर ROB से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड के लिए लगभग 251 करोड़ रुपए और कालवाड रोड से बांडी नदी तथा निवाई रोड क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए 176 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा रामनिवास बाग में फूड एरिना, विद्याधर नगर में MICE सेंटर, मानसरोवर के शिप्रापथ के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज तथा फुटपाथ कार्यों को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

एक साथी की बात है कि आज तो सुरीला सफर हम सब हंसते हंसाते तय करने वाले हैं। आज कॉमेडी किंग महमूद जी की याद का दिन है, उनको मेरा शत शत नमन। हंसना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि श्वास लेना। हंसने से तनाव दूर होता है, पॉजिटिविटी आती है और मानसिक शांति एवं ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो दिल को बेहद सुकून और खुशी मिलती है। हंसते गाते कट जाए ये दिन। और एक साथी लिख रहे हैं कि हास्य अभिनेता महमूद जितने बेहतरीन कॉमेडियन थे उतने ही गहरे भावुक अभिनेता थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक दिव्यांग बच्चे के गरीब पिता के रूप में उनके मार्मिक अभिनय ने हर दर्शक की आंखें नम कर दी थी। महमूद सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार थे। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो दिल की और हंसने हंसाने की बात ही होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले धर्म पत्नी पास बैठकर बोली कि सगाई के बाद और शादी के शुरू के दिनों में आप दिल से मेरी कितनी तारीफ करते थे। मैंने कहा कि वो तो अभी भी मैं कहता हूँ। फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं शुरू करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नजर आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा। इस फिल्म का ये गाना है। मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि मैं अपनी योग क्लास में रोज हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफर की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह में 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद में अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है। और ये खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है, सोचिए अगर ये खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी, आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और खास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है, बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहां तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाजें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है, अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

कॉफी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन, आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सत्य।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी, या आपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई जरूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की जरूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक

से कलाकार के रूप में उन्हें ज्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, आवाज है मोहम्मद रफी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

0: शीतलम।
1: बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाए। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया। जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस खत्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ। फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए। जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले, तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है, हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। सबसे बड़ा रुपया, इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने, चार पांच लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था। वो फोटो आज भी देखती हूं तो अपने आप चेहरे पर हंसी

जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते हृदय, क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते, अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई, और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है। यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियां खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है, किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है, और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है। अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं, कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बात बात पर बहुत हंसता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है, चाहे कितनी ही हंसी की बात हो वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा। चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से मोहम्मद रफी और महमूद की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना।

ए सोला साला चंदन है तेरे ख्याला चंदन, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ।

आतई दंडाना क्यों पास न आतई दंडाना या मारिए पाता दंडाना दिल तोड़िए घाता दंडाना तुम्हें किधर को जाता ही दंडाना क्यों पास न आता ही दंडाना या मारिए पाता दंडाना दिल तोड़िए घाता दंडाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले

0: चाली चाचे भूमि चाके ताली चाके जमी चाके जाला आंखे ताके जोगी ताके ताजी के नेते ताके नाके ताके जमी चाके नाके नाके जमी चाके नाके नाके जमी चाके नाके नाके जान तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुजारी ता गुजारी के ताली तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुजारी ता गुजारी के जम तारी जग तारी ताके नाके नाके ता जिंदे ता जिंदे ता जिंदे ता जम तारी जग तारी जाने जाने को ता जिंदे ता जम ता जिंदे ता ताके जंगे करने रुदम करे जंगे करने रुदम ताके जंगे करने रुदम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी हाय क्या
2: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे

0: पाखा नारंगी की पाका पाता क्यों जा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी
1: गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहा के लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूँ कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है। तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे जरूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे। एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो खत्म ही ना होता। एक जमाना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते? चलिए गीत सुनिए।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है ये पढ़ते पढ़ते गीत कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसिए, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसे, हंसे हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुंच गए, वैसी टी शर्ट और ड्रेस पहनकर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी। इस गीत में हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी, और हमारे प्राचार्य थे उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार ये गाना सुनवा के, जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है, चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी बरसात से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है

ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो है वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुना कर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुना कर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है। और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और महमूद की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: Uriah!

हंसते हंसाते रहिए और अपने हृदय के अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: My property will be default upon my legal heir, and after that their sons and daughters will enjoy the property, but after that the property will go to WACO.
1: Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
2: The Sonai Rupai Wildlife Sanctuary in Assam's Sonitpur district has once again become a topic of national discussion. Prime Minister Narendra Modi mentioned the Sonai Rupai forest and the return of elephants during the 138th episode of Mann Ki Baat. We have a report.
3: The Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, located in the foothills of the Himalayas, covers an area of 220 square kilometers. It was officially notified as a wildlife sanctuary on September 4, 1998. According to Assam Forest Department 2024 elephant census, 140 elephants were recorded within its boundaries. The sanctuary was once home to hundreds of elephants, but they abandoned the area due to increasing human activities and land encroachments. However, the eviction of these encroachers and a strong emphasis on restoring greenery through afforestation have helped restore the ecological balance of the forest. As a result, herds of elephants are now being seen in those areas where they had not been spotted for many years. With Rajat Bharadwaj from Sonitpur, Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
2: At the Asian Games 2026, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Hooda and Ankush Panghal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish. In the men's javelin throw, Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. India has won a total of 48 medals at the Asian Games 2026. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defense, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Dhanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at Women's Individual Trap event. With that, we end the midday news.
4: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है. नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है. देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर. भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की. राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी. और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया. और अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं. अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ. उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है. एक रिपोर्ट.
5: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस

0: यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमांड के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और

0: अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां, तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की। सब तो मुझे मालूम था कि गौरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिला लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी

0: फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
1: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाए वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
2: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाए वन्य जीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
3: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलो सिरानी का संगीत।

0: अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब सुनते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, कैफी आजमी के बोल हैं, संगीत है SD बर्मन का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया

आइए अब सुनते हैं अनुराधा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और रविशंकर का संगीत है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: ये है बाबर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल है और संगीत है रोशन का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना। और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बम्बई का बाबू। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों बाद सखी सहेली के मंच पर आपके साथ वक्त मिला है कुछ बातें करने का, कुछ विषयों पर चर्चा करने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि समय कितना गुजर जाता है जब हमारा मिलना वैसे तो होता है, लेकिन हाँ इस मंच की देखिए अलग ही बात होती है ना। तो हमारे साथी भी इंतजार कर रहे होंगे कि आज तो भाई मंजू जी भी

0: और मंजरी भी और ये लोग क्या दिल की बातें करते हैं ना।
1: बिल्कुल। और देखिए दिल की बातों की आपने बात की, तो जब भी मिलते जुलते हैं तो दिल की बातें करते हैं और कर ही लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कहते हैं कि दिल की बातें कर लेने से मन जो है हल्का हो जाता है और हमें थोड़ा सुकून भी मिलता है कि हमारी सखी ने, हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, हमारे मित्र ने हमारे दिल की बात सुन ली। हो सकता है वो कोई उस चीज का कोई सोल्यूशन दे सके, कोई उसका निर्णय निकल सके।
0: बिल्कुल।
1: और एक मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही साथ हृदय की जो या दिल की जो सेहत है वो भी दुरुस्त रहती है।
0: बिल्कुल दुरुस्त रहती है और बातों का कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाता है।
1: सही बात है। और आज के विषयों की बात कर ले हम सबसे पहले।
0: हमने तो बातों में आपने दिल की बात करी, उसमें अभी विषय आपने निकाल दिया, तो मैंने कहा भाई मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे दिल से, तो कोई राय का पहाड़ भी नहीं बना पाएगा।
1: तो तुमने भी विषय की बात
0: कर दी मुहावरों की दुनिया में, है ना।
1: बिल्कुल। तो आज का हमारे जो विषयों में सबसे पहला विषय होगा स्वस्थ दिल लंबा जीवन। चूंकि आज विश्व हृदय दिवस है तो हम दिल की या हृदय की बात करेंगे। और इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे महिला उद्यमी अदिति बलबीर की।
0: जी। और इसके साथ हल्की फुल्की बातें में होगा कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाने दे। यानी ये जो सारी चीजें है ना आज की, दिल की बात है, फिर अन्न की बात है और राई के पहाड़ बनाने की बात है, तो ये सब चीजें एक दूसरे से मिली हुई है। क्योंकि दिल से हम अगर खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे तो हम पूरा ठीक से खाएंगे, और दिल से नहीं खाएंगे तो हम थोड़ा थाली में छोड़ देंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: जी। तो इस तरह की बात
1: है, अन्न को व्यर्थ ना होने दे, जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और अगर बच जाए और किसी तरह आप अगले दिन उसका उपयोग कर सके तो अच्छी बात है। या जैसे किसी समारोह में अगर बच जाता है तो आपको किस तरह से दूसरों को वो दे देना चाहिए ताकि उसका उपयोग हो सके, इस के अंतर्गत हम यही बातें जो है करने वाले हैं। इसके अलावा मुहावरों की दुनिया में जैसा तुमने बता ही दिया है कि राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके बता देना, जितनी बड़ी वो है भी नहीं बात।
0: बिल्कुल। तो, और मंजू जी, राई को अगर हम चाहें भी कि एक पहाड़ की जैसे खड़े करने की सोचे, कल्पना भी करें, तो राई
1: नहीं
0: रुकेगी, नहीं वो भरभरा के गिरी जाएगी।
1: हाँ। तो इसी तरह से जब छोटी सी बात को कोई बहुत बड़ा बना देता है तो जैसे राई भरभरा के गिर जाती है, उसी तरह वो बातें भी कभी न कभी सामने आकर के गिर जाती है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो स्वस्थ दिल लंबा जीवन, दिल की बातें हम करते हैं तो दिल हमारे शरीर का इंजन है, और जब इंजन सही चलेगा तभी जिंदगी की गाड़ी लंबी और सुहानी चलेगी। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे हम मनाते हैं ताकि हम सब इसकी अपनी इस धड़कन की कद्र करना सीखें।
0: बिल्कुल। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, खराब खान पान और लगातार बढ़ते तनाव का जो सबसे बड़ा असर होता है वो हमारे दिल पर ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है मंजू जी कि अपने दिल को मजबूत और सेहतमंद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजमर्रा की जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने दिल को भी संभाल सकते हैं।
1: बिल्कुल। और दिल को सेहतमंद रखने के कई सारे ऐसे तरीके हैं जो आसान भी है और कारगर भी है। इस बारे में हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें हमें लिख करके भेजी है, तो उन आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे और श्रोताओं के कमेंट्स की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल को सही रखने का एक और तरीका है, संगीत कितना दिल को है ना खुशी से भर देता है, मन को खुशी से भर देता है, उससे भी तो हमारी सेहत अच्छी होती है।
0: बिल्कुल, आपका इशारा समझ गए।
1: चलिए सुनते गाना।

0: मंजरी ये गाना हमने सुना, दिल मेरा बस में नहीं, लेकिन दिल को बस में रखना पड़ता है,
1: बिल्कुल रखना पड़ता
0: है। कई बार हालांकि हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं, नहीं रख पाते हैं, लेकिन दिल को बस में रखना या वश में रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो भी एक कला है मंजू जी।
0: हाँ,
1: कि हम अपने हर परिस्थिति में, चाहे वो खुशी के दिन हो, चाहे गम के दिन हो, दुखी वाले दिन हो, हर समय हमें अपने दिल को बहुत मजबूती से रखना पड़ता है, कि तभी हम सामने जो भी हमारी समस्याएं होती, चाहे खुशियों के दिन, उनका सामना हम कर पाते हैं। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल केवल हमारे शरीर का एक अंग नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। स्वस्थ दिल हो तो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की रौनक बनी रहती है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बहुत बात लिखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम सखियां मिलती है तो दिल की बात करती है, तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
1: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहां 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम

0: का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें अब जल्दी ज्यादा सुनाई देने लग पड़ने की, तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियां सुनाई देने लग गई हैं।
1: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के जमाने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं है और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं है, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज वगैरह डाल करके इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है।
0: बिल्कुल।
1: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, रोज 7 से 9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसी और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की जरूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की जरूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लिया कीजिए, यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं, और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
1: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे। तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया था, लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहाँ ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है, रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है, बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं, जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य है। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताजा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीजों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खानपान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती है।
0: देखिए, रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें

0: शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है, और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है, तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी।
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी की मुस्कान और ठाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर।
0: तो एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद। और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है उसके बारे में बात करेंगे। अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र है। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज्यादा रिसोर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट्स ऑफबीट यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफबीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में पीजीडीएम यानी कि एमबीए की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसोर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसोर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को खत्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसोर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसोर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसोर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वी रिसोर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसोर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसोर्ट्स में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है, दूसरा जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है, दूसरा जब उनका घर वही है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोजगार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुँचाना ये भी इस चीज का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वुमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC टीवी 18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया। और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और

0: हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीजें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीजों को हम अच्छा करने के लिए सोचे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहां काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी, या फिर वहीं जाकर के हम पैसा कमा सकते हैं, या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नजर डालें, या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीजों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है, या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नजर डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें, उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है, या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे आने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है, और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की जरूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

भक्तो, अरे रे रे रे रुकता है, अरे अरे मन मेरा, अरे रे

0: तो मंजरी गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हो, कुछ तो हम खाते ही हैं, पीते ही हैं। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे।
1: बिल्कुल, और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और जमीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींच कर बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती हैं, गेहूं की बालियां लग रही हैं, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं तो फिर मन खराब होता है कि नहीं एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते हैं।
0: बिल्कुल, किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात
1: सही
0: नहीं है। हमारे साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है ना जाए व्यर्थ उनका एक भी दाना, अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें आप ले लेते हैं या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसमें जूठा छोड़ देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर की में जाते हैं वहां की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहां की उनकी बात की, वहां दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम ले और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है तो वहां खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती है, बहुत तरीके के व्यंजन बनते हैं और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूं,
1: कैसे खा सकते हैं,
0: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती

0: है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है। और उस चक्कर में जब कोई भी चीज थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता
1: वो तो खैर ये अपना सोचना है, लेकिन आजकल लोग दिखावे के चक्कर में तरह तरह की चीजें रखते हैं और सलाद के भी इतने सारे वैरायटी होती है, फ्रूट्स की भी होते हैं, स्टाल होते हैं कि सब तो नहीं खा सकता कोई। तो ठीक है, आप उन्होंने लगाया ये आप उनको अपना अपने तरह से सबको स्वागत करना है, लेकिन हम अपने लिए अपनी थाली में अन्न का स्वागत हिसाब से करें वो ज्यादा सही है। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे मंदिर में जहां खाना होता है वहां दीवारों पर लिखा होता है खाओ मन बचाओ नकन, और इतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। बहुत सुंदर सी बात है। इसी तरह एक साथी और लिखते हैं कि अन्न का दाना व्यर्थ ना जाए, इसके लिए घर या सामूहिक भोजन के वक्त ये बात ध्यान में रखें, इतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। सभी ने ऐसी बात लिखी है। और थाली में लिया हुआ खाना झूठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीजों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतजाम किया है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
0: बिल्कुल
1: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है। और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई है जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही ले जितनी भूख हो, और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि जरूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या जरूरतमंदों तक पहुंचाए। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाजार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना ले ताकि जरूरत से ज्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
1: और हम लोग पहले गीत सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

0: हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में, बनाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारा दिल नहीं करता है
1: बिल्कुल फेंकना,
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं,
0: हमारे भी होश उड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप उसमें डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियां भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की
0: कटलेट भी।
1: हाँ, तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए।
0: हाँ,
1: कि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो खराब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दे, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो दूसरों को दे दें। जो भोजन आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं। राई का पहाड़, ये एक कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: मतलब जैसे कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती ना वैसी चटकेगी। कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियां या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पे हम बैठेंगे, उस पे हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे
1: तो,
0: देखो मंजरी, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो इससे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद होता है,
1: उन्हें मजा आता है चटकारे लेके। हाँ। उसमें किससे अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते हैं ना मुंह से बात निकली।
0: हाँ।
1: किसी ने कहीं कहीं तक कही लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है।
0: हाँ, जब एक ही बात अगर मतलब 5-6-10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका रहता है। यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता है।
1: तो बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी की, अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है। कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो,
0: लेकिन ये
1: तो
0: संभव नहीं होता,
1: नहीं हो पाता।
0: किसने किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात ये है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस

0: होते हैं, तो उसके लिए समय की भी जरूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही नहीं कर पाएंगे।
1: अच्छा है कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें फैलाने दो जिसको फैलाना है।
0: सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राय का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है, उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात।
0: थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए, और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके अगर उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए। बात चाहे राय जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहां तक है मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिले तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राय का पहाड़ कितना ही बड़ा हो पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राय का पहाड़ बना ले उसकी बातों को जवाब ही मत दे, खामोश हो जाए। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राय, एक और लिखते हैं कि राय का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा आप खींचे मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कहानियां थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: तो, किताब देनी चाहिए किसी की भी ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और
3: हाँ, पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहां पे बर्बाद नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छी सी बात है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
2: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत, पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सके, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
3: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें जरूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
2: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचे कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंका।
3: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम

0: देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नजर डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है और खासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज्यादा रेडियो लोग ज्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो है वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किया, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का?

0: आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
1: नहीं, चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी
0: जी
1: वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पे जॉब मिला, एडी।
0: एडी।
1: तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम
0: पर
1: देगा ये।
0: फिल्मी हस्ती हुआ आपने देखा है अपने घर पर
1: हाँ,
0: बचपन
1: वो
0: से
1: देखा था, तो
0: आते
1: उस
0: जाते?
1: वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूं तो वो मेरे डैड की बदौलत ही, उनकी
0: जी
1: वजह से हूं।
0: जी जी जी उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई, या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम नजर आए?
1: उस टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। अब मैंने वैसे बचपन में एक एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी। तो
0: अच्छा।
1: उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था। हमने एसएल स्टूडियो में शूट किया था उसको, ट्रॉम्बे में, बहुत दूर, जब बचपन में तो बहुत ज्यादा दूर लगा था। अब और ज्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह से।
0: जी
1: तो हम वहां पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें, डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा, मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग भूल गया। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है,
0: जी
1: मतलब मुझे डरना ही था इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला अरे ये अच्छा एक्टर है, लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब की, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है, और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ करना
0: नहीं, आप जो हैं जिस भी पात्र में ढलते हैं हमें बहुत अच्छे लगते
1: थैंक
0: हैं
1: यू,
0: और
1: सो
0: बहुत
1: मच।
0: पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
1: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर एसएससी बोर्ड में था, और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया, और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया, और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था।
0: जी
1: तो वहां पर मतलब मेरी पूरी कायापलट हुई एकदम। वहां काफी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला, इस्माइल यूसुफ में भी काफी शुरू हो गया था
0: जी अच्छा, थिएटर और ड्रामा दोनों
1: थिएटर
0: ही से?
1: ड्रामा। तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना, स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहां पर नाटक हुआ नहीं, एक एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो फिर वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली, वहां पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी
0: अच्छा।
1: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे, पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया। फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
0: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, उस बारे
1: हाँ
0: में भी हम बात
1: जी जी
0: करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
1: मेरी पसंद का कोई गीत, यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर
0: अच्छा,
1: गमन से,
0: थोड़ा सा गुनगुना देंगे
1: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: क्या बात है, सुनवाते हैं गीत
1: अभी से
0: अपने।
1: मैं ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं नहीं हर गीत पे
1: जैसे वो
0: हम
1: कहते
0: नहीं
1: हैं ना
0: गवाएंगे
1: कि
0: आपको,
1: बच्चों
0: अगर आप
1: को,
0: ऐसा चाहेंगे तो।
1: हाँ, कि बच्चों के बोलते हैं कि
0: जी जी
1: महाराष्ट्र कौन से

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है तो हाँ, उससे पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने अच्छा, मेरा पहला काम जो
0: पहला
1: है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी।
0: हाँ, हाँ,
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड है, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राशि प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके जरिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नब कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिम्पल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी, तो बहुत मजा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है?
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा योगदान है, तो उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो उस तरफ बढ़ाया रुझान। तो वो उन्हें पहले कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था राजश्री प्रोडक्शंस में, वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स खत्म होते थे तो मैं शाम को वहां पहुंचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे
0: जी।
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए

0: निकला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया तो, और बोला अरे यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफी अच्छी कमांड है। तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा मतलब एमटीवी के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी, अच्छा। उसमें उस वक्त वीजे थी वो उस एमटीवी में, तो वो शो लिखना था उनके एंकर लिंक्स वीजे लिंक्स जो होते हैं कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ईटीसी, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, साल दो साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया जी। फिर नौकरी की मैंने एमटीवी में, 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल चैनल वी में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी। मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा, अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज
1: जी।
0: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई, बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज्यादा जो मैंने एंजॉय किया वो एमटीवी के जो 4 साल थे वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मैंने वहां पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ जिनके
1: जी,
0: साथ
1: जी।
0: तो वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं एमटीवी में।
1: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया,
3: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया,
2: आके सीधी।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया,

0: गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं, आपके खाते में शामिल हैं। हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की, काफी
1: जी
0: चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ?
1: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था, 4 साल एमटीवी में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था। और उस वक्त मेरे एक दोस्त

0: मेरे एमटीवी के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे, तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में, और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया। रोल क्या, वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते, बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया। और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे, वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का, तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का, मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा, कुछ वो नहीं था। उस
1: जी
0: ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है, वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते।
1: जी
0: तो बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को, और इतनी तारीफ की थी। और मतलब डैनी बॉयल साहब है
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था, ना कोई ईगो था, ना कोई ऐसे अहम था कुछ। इतना प्यारा इंसान, बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था,
1: जी
0: लेकिन उन्होंने 2 दिन का रखा था बफर। फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था, और नेक्स्ट डे शूट हुआ था। तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया, तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले, और पहले उन्होंने माफी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए।
1: अच्छा
0: उनको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने,
1: बिल्कुल
0: हाँ मुझसे मिलने की जरूरत थी, बट उसके बावजूद वो आए। और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इंप्रोवाइज की थी कुछ, तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी, वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी।
1: जी
0: तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, वी एडेड योर लाइन, यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ। मतलब मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे, जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा। मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1,000 लोगों को सुनाता
1: और जब तक है जहां उससे भी
0: हूँ।
1: आप रिलेट किए, उससे कैसे
0: हाँ
1: जुड़ना हुआ?
0: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था, और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए, सैकड़ों, और सिर्फ रिजेक्शन मिले। एक ऐड किया था, एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था।
1: जी
0: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज्यादा, तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी। एक चैनल था यूटीवी बिंदास, वहां पर मैंने ज्वाइन किया एज एवीपी प्रोग्रामिंग, और वहां कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फोन आया,
1: अच्छा
0: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो यूट्यूब पर देखी, और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके
1: जी
0: सीन्स के साथ
1: अच्छा
0: ऑडिशन दिया, फिर वो हुआ। उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया, उसके बाद मुझे जो जैन के जो जो मैं प्ले करने वाला
1: जी
0: था
1: जैन
0: उसके सीन्स दिए, और फिर उसके 3 राउंड हुए। और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था, उस वक्त
1: अच्छा
0: वो शानू की असिस्टेंट थी।
1: हाँ।
0: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीजें जो मेरे साथ में हो रही थी, और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था, और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, तो मैं आराम से मतलब
1: मौका
0: कल्टी
1: मिल गया
0: मौका
1: आपको
0: मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था
1: जी
0: और ऑडिशन देके आ जाता था। तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फोन किया, शानू ने, कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है। तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूं। तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है एक बार और ले लो। तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में, और वहां पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया, और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुंचा ही था मैं कि आधे घंटे में फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है, दो
1: अच्छा
0: दिन बाद
1: उसी
0: या
1: के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
0: हाँ सेम रोल का ही
1: अच्छा
0: मैंने इतनी बार
1: हाँ हाँ
0: ऑडिशन
1: हाँ
0: लिया,
1: हाँ
0: और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए
1: हाँ
0: था,
1: वो कुछ
0: और
1: अलग
0: मैं
1: क्लिक
0: उस
1: कर
0: वक्त एकदम
1: गया।
0: ऐसा था। 90 किलो का।
1: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो

0: प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार बार राउंड देने पड़ते हैं?
1: हाँ, जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड होते हैं फिल्म में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत जरूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं एमटीवी में मैंने मतलब काफी जो हम स्केच कॉमेडीज करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा एमटीवी बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान, और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना कहीं, बहुत सारे, तो कैसा महसूस हुआ या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आप कि नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं आगे और कोशिश करेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ होगा?
1: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसलिए क्या था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत। और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता। और मैं थोड़ा बचपन से ही काफी पॉजिटिव रहा हूँ, और मेरे आसपास भी काफी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही, और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है, हम सब इसमें तुम्हारे साथ में है। तो वही, और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है, तो बस जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा।
0: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट वो नजर आया फिल्मिस्तान
1: जी
0: फिल्म में। हाँ। तो वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने, उसमें डायलॉग भी है। हाँ, ये कि मेरा जन्म
1: मैंने लिखे हैं फिल्म।
0: हाँ, वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है।
1: यस।
0: तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे
1: फिल्मिस्तान? मैं असल में जब मैं तब ये यूटीवी मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहां पे 3-4 महीने जो मैंने वहां पर गुजारे थे, उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की। तो मैं ऑफिस खत्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था, और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे, और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड। मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया, और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ, उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है। और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में, मेन लीड में वो भी। बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला, उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए, और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया, और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई, और उसी दौरान फिल्मिस्तान दिया, तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कंधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
0: बिल्कुल, कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल जाता है।
1: वो मिल जाता है, तो वही हुआ मेरे साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
0: बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पसंद का गीत?
1: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफर में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोड़ा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग
1: है,
0: भी आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं। हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा, बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीजें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूं तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नजर आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा, थोड़ा, तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: लगे
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में,
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा दो दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
0: पैदा
1: हूँ, और जब मैं लोगों
0: हुआ
1: को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है, और उसमें भी
1: जी
0: नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं
1: हाँ
0: के साथ काम किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
1: बहुत।
0: कैसा यह
1: हाँ,
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी, हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों, एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार, मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहां पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें।

तो कैसा रहेगा। और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था यार, ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ। और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें। और हमने फिर मैंने नितिन ने और हमारे

0: ताकि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें। और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की। और कुमुजी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूंगा या करूंगा भी, यानी वो भी नहीं पता। लेकिन अगर सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने प्रोड्यूस की तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ
0: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम सिंह चार्ली का हूँ। ये एक खूबसूरत फिल्म है। और यस,
1: तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियां या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
0: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं
1: जी,
0: वही रचा बसा है।
1: हम काफी रिलेट कर पाते हैं।
0: हाँ, टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर मेहरूनी में जो किया है,
1: मेहरूनी की बात करते हैं, बिल्कुल,
0: तो वो सब वैसे ही है। इट्स ओनली 47 डिग्रीज में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी जी जी जी।
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाए उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज्यादातर जो है वो एक वो, हाँ, मिडिल क्लास वाला,
1: और दर्शकों से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ाव
0: तो
1: आ
0: है।
1: जाता है।
0: हाँ।
1: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, हाँ। मतलब काफी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज तुम्हें हो ना हो मुझको तो
1: बिल्कुल
0: इतना यकीन,
1: वो सुनवा देते हैं, वो गीत हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: बात तरला की जैसे आपने की, बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड के रूप में वो किरदार है, तो कहीं ना कहीं निजी जिंदगी में भी काफी सपोर्टिंग रहे हैं आप कहीं ना कहीं। और जब आप एक चुनौती भरा वो फेज से गुजर रहे थे, वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, तो आपकी वाइफ जो है नसरीन जी आपके साथ रही हैं, कैसे उस दौर से आप निकले हैं? अगर आप अपने निजी कुछ अनुभव बताना चाहें तो कैसे वो आपकी सपोर्ट रहे हैं?
1: वो तो मतलब जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या खत्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
1: और
0: ताकत रही
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीजें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
0: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन। इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
1: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी जिंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर खत्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के जरिए, जब तक है जान के जरिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं, और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फोन का इंतजार भी करने लगते हैं कि यार अब
0: बिल्कुल।
1: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी, और हफ्ता 10 दिन लग गया, और उसके बाद लेकिन फोन आया और मेरी पहले डीके साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे, नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में मतलब

0: नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
1: कंफर्टेबल है.
0: कंफर्टेबल हैं. तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ. तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको. फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब. तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे. फाइनली फिर वो जेके जो है, जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया. और फिर जब आया, जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक, इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक
1: बड़ा
0: बदलाव
1: होगा
0: आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है.
1: जी.
0: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था. जैसे ही फैमिली मैन आया सीजन 1, और वो ओटीटी पर, मतलब एक एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे.
1: बिल्कुल.
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे, और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोवर्स बढ़ने लगे सब जगह. सीजन 2 आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया. तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया.
1: बिल्कुल.
0: स्कैम आया, जबकि उसमें मेरा एक सीन था, उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया.
1: जी.
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई. और मतलब वो मेरी जिंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
1: बिल्कुल.
0: फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है.
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात की करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है. तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
0: नहीं, तो लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा. और सुमन कुमार जो है वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे, और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे. तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, और लेकिन
1: कहीं
0: राज
1: कहीं
0: एंड
1: वो
0: डीके जो है
1: पंच.
0: ना, हाँ
1: हाँ.
0: वो कभी कट नहीं करते हैं. जब सीन खत्म हो गया जो पेपर पे था, उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते. और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम.
1: हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल.
0: वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं तब तक वो कट नहीं होता.
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है.
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मजा आता है. उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोज पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं. कमाल, बहुत ही मजा आता है उनके साथ काम करने में. और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, और उसमें से कुछ जमती हैं, कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है. मतलब ऐसा
1: बिल्कुल.
0: कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की. राजेंद्री
1: बिल्कुल.
0: के बहुत हमें मतलब आजादी देते हैं, जहां पे हम कुछ ज्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते जरा कंट्रोल. फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में. मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है. आज मनोज सर के साथ शूट है, राज एंड डीके हैं, और मैं जेके बनूंगा और मजेदार कुछ कमाल करेंगे. और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है. तो अब मैं सीजन 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतजार कर
1: हमें भी
0: रहा
1: इंतजार है, बहुत बेसब्री से इंतजार है हमें.
0: थैंक यू.
1: अच्छा, इन सीरीज में जहां पे एक्शन सीरीज होती है तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है?
0: नहीं,
1: स्टंट्स आप
0: बहुत
1: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठे उठा लेते
1: उठा
0: हैं, और वो
1: लेते
0: कोई बोलता भी नहीं है कि
1: जी.
0: आप करो. अगर डिफिकल्ट
1: हाँ
0: होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं. और जहां पे जो हम खुद कर सकते हैं, भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहां पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
1: यूज्ड टू हो जाते
0: यूज
1: हैं.
0: टू हो जाते हैं. कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था. मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था. तो मैं टेबल पे गया, फिर वहां से जमीन पे गिरा. लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है. तो
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है. मेरे तो नहीं है.
1: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से.
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफी, मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ. 2 सीन्स हैं मेरे जो काफी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में. तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था, मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों

0: ही मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो, मेरे ख्याल से उसके बाद, उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया
1: जी,
0: सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
0: किशोरदा का एक और काफी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: ना कोई दिल में समाया,

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफर नहीं है। तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन एक ये जो ऑडिशन होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते ही रहने

0: चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा। और टिके रहना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए। कोई जिंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं, वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें हो गया। काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर
1: तभी
0: गेम में
1: मौके।
0: है ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं।
1: आजकल बायोपिक का जमाना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू, कोई खास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
0: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी, मतलब क्या कहते हैं उसको,
1: कमाल हो जाएगा।
0: बहुत था। लेकिन वो खाली वो सपना है, वो तो मुझे पता है। लेकिन हाँ, अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना
1: जुड़ना
0: चाहूंगा,
1: चाहेंगे।
0: जुड़ना चाहूंगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर फिल्म बन रही है, मैं जरूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
1: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो। और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जैसे बोलते हैं, मन का सुकून?
0: मैं घर पर रहता हूँ। दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ। फैमिलीज जो हैं, मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ, और फिल्में देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत। और अगर ज़्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है,
1: म्यूजिक तो हम जानते ही
0: फिल्में
1: आपको।
0: बहुत पसंद है।
1: जी
0: तो मतलब टाइम तो बहुत कम है एक्चुअली।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपने अपने फिल्मी सफर के साथ साथ जिंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ,
0: जी
1: और बहुत मजा आया बातचीत करके।
0: थैंक यू,
1: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी,
0: थैंक
1: और
0: यू
1: आप बार बार आए और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के जरिए।
0: थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया, मेरे लिए, मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर। और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में, जी मतलब आंख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज
1: जी
0: मैं वहां बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भाव

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी अलवर सरिस्का चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी रेडियो सखी अर्चना उपाध्याय। कैसी हैं हमारी सखियां? उम्मीद करती हूं खुश होंगी। सखियों, हर महिला की अपनी एक कहानी है, हर घर की अपनी एक पहचान है और हर जीवन में एक नई सोच और नई दिशा की ज़रूरत होती है। इसी सोच के साथ महिला जगत लेकर आता है आपके जीवन से जुड़े कुछ विषय, आपके स्वास्थ्य और खुशियों से जुड़ी कुछ बातें, समाज और परिवार से जुड़े कुछ सरोकार और कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम में भी कुछ पल अपने लिए निकालते हैं, कुछ नया जानेंगे, कुछ विचार करेंगे और कुछ अच्छी बातें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे, हमारा पहला चर्चा का विषय है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। जानकारियों के अंतर्गत आज हम आपको विश्व हृदय दिवस के बारे में बताने वाले हैं और विविधा में हम आपको बताएंगे कि खुश रहना भी एक कला है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी अपनी साथी अर्चना उपाध्याय लेकर आई है महिला जगत एक नई सोच, एक नई दिशा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज की इस बातचीत में भोजन से मन तक और मन से हृदय तक की इस खूबसूरत कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। श्रोताओं, जरा सोचिए, जब हमारे घर में कोई बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? शायद ठीक से खाना नहीं खाया होगा। और जब कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ महसूस करता है तो अक्सर सवाल होता है, आज कुछ खाया पिया है या नहीं? यानी हम

भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं भोजन हमारी ऊर्जा का संबंध बहुत ही गहरा है। लेकिन भोजन का संबंध केवल शरीर से नहीं है, हमारे खाने की गुणवत्ता हमारी ऊर्जा, दिनचर्या और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी संतुलित और विविध आहार को स्वास्थ्य की बुनियाद मानता है। स्वास्थ्य आहार में पर्याप्त संतुलन, संयम और विविधता महत्वपूर्ण है। सखियों, हमारे भारतीय भोजन की सबसे सुंदर बात क्या है? हमारे पास भोजन की कितनी विविधता है। दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, मोटे अनाज हैं, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे श्री अन्न हैं, दही छाछ जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं और तरह तरह के मसाले और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं। बस ज़रूरत है सही चुनाव और सही संतुलन की। अच्छा सखियों, जरा सोचिए, भोजन में संतुलन क्यों ज़रूरी है? कई बार हम स्वाद के पीछे भागते भागते स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत अधिक तला हुआ भोजन, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा मीठा, बार बार पैकेज्ड या अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड, ये आदतें लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। WHO के अनुसार अस्वास्थ्यकर आहार हृदय रोग सहित कई गैर संचारी रोगों के जोखिम से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भोजन ऐसा हो जो पेट को भरने के साथ साथ शरीर को पोषण भी दे। एक छोटी सी बात याद रखिए, पेट भरना और शरीर का पोषण होना दोनों एक ही बात नहीं है। हमने कितना खाया, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने क्या खाया और किस मात्रा में खाया। सखियों, आपको पता है हमारे पूर्वज मौसम के अनुसार ही भोजन करते थे। गर्मी में हल्का और पानी से भरपूर भोजन, सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ, बरसात में स्वच्छ और आसानी से पचने वाला भोजन, ये परंपरा केवल स्वाद के लिए नहीं थी बल्कि स्थानीय उपलब्धता और जीवन शैली से भी जुड़ी हुई थी। आज हम हर मौसम में हर चीज़ उपलब्ध होने के कारण कभी कभी प्रकृति के इस चक्र को भूल जाते हैं। तो क्यों न हम फिर से थोड़ा अपनी पारंपरिक समझ की ओर लौटें, मौसम के अनुसार खाएं, स्थानीय भोजन को महत्व दें और भोजन में विविधता रखें। मन से भोजन का रिश्ता है, तभी तो कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। सखियों, अब आते हैं आज के विषय के दूसरे हिस्से पर, जो है हमारा मन। सखियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो कभी कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती और कभी कभी बार बार कुछ खाने का मन करता रहता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा खाने का व्यवहार हमारी भावनाओं और दिनचर्या से बहुत प्रभावित होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि भोजन जल्दबाजी में या लगातार मोबाइल को देखते हुए ना करें। थोड़ा समय निकालिए, भोजन को देखिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए और धीरे धीरे खाइए और जितना आवश्यक हो उतना ही लीजिए। घर की महिलाओं के लिए तो ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर माँ, गृहिणी पूरे परिवार को खाना खिलाती हैं लेकिन खुद सबसे आखिर में खाना खाती हैं। कभी कभी अपना खाना भी छोड़ देती हैं, कभी ठंडा खाना खा लेती हैं और कभी कभी कहती हैं अभी समय नहीं है, बाद में खा लूँगी। लेकिन सखियों, याद रखिए, परिवार की देखभाल करने वाली महिला का अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही महत्वपूर्ण ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इसलिए अपने लिए भी भोजन का समय निकालिए। हम अपने खाने की आदतों में एकदम बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे थाली में सब्जियों और सलाद को स्थान देना, मौसमी फल खाना, दाल, चना, मूंग, राजमा जैसी पौष्टिक चीज़ों को भोजन में शामिल करना, नमक और अत्यधिक मीठे का सेवन कम करना, पर्याप्त पानी पीना, भोजन को धीरे धीरे और ध्यान से खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचना और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखना। तो श्रोताओं, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन केवल एक कहावत नहीं है, यह हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होने का संदेश देती है। आइए आज से अपनी थाली को थोड़ा और संतुलित बनाएं और अपने भोजन को थोड़ा और स्वस्थ बनाएं। श्रोताओं, समय हो चला है मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं एक मधुर गीत। गीत के बाद हम जानकारी देंगे विश्व हृदय दिवस के बारे में। पहले सुनते हैं ये गीत।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या

0: अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: सखियों, उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर, विश्व हृदय दिवस। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय महासंघ के अनुसार ये दिन दुनिया भर में हृदय और हृदय संबंधी रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। 2026 के अभियान का संदेश है, हार्ट डिजीज कैन हाइड इन प्लेन साइट, डोंट मिस ऑबिट। हमारा हृदय दिन रात बिना रुके काम करता है। हम सो रहे हों, काम कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों, खुश हों या परेशान हों, हमारा दिल लगातार अपना काम करता रहता है। तो क्या हमारा भी ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने दिल का ध्यान रखें? श्रोताओं, हम आपको बताएंगे कि हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या क्या करें। WHO के अनुसार हृदय रोगों के जोखिम से जुड़े महत्वपूर्ण व्यवहारों में अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता और तंबाकू का सेवन शामिल है। स्वस्थ भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और तंबाकू से दूरी जैसे कदम जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए कुछ आसान बातों को याद रखें। पहली बात, खान पान। और जैसा आप हमने चर्चा के दौरान भी बताया, ये कम नमक, कम मीठा, संतुलित भोजन, पर्याप्त फल सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाए रखें, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन सकते हैं। सखियों, WHO वयस्कों के लिए नमक का सेवन प्रतिदिन 5 ग्राम से कम रखने की सलाह देता है। दूसरी बात, शारीरिक गतिविधि। हमारे लिए व्यायाम का अर्थ हमेशा जिम जाना नहीं है। तेज चाल से चलना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, घर के काम करना, कुछ देर पैदल चलना, दिन में 15 से 20 मिनट कुछ छोटा मोटा शारीरिक व्यायाम करना, ये सब भी शारीरिक सक्रियता का हिस्सा हो सकते हैं। जी हाँ सखियों, नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। तीसरी बात, तंबाकू से दूरी। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे परिवार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सहयोग मिलना ही चाहिए। श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार शरीर में बढ़ा हुआ रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देता, इसलिए अपनी उम्र और चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार डॉक्टर की सलाह, नियमित जांच हमेशा कराना उपयोगी होता है। WHO भी हृदय संबंधी जोखिमों की पहचान और समय पर प्रबंधन को महत्वपूर्ण मानता है, विशेषकर यदि परिवार में हृदय रोग का इतिहास रहा हो तो, या व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, मधुमेह अथवा अन्य जोखिम हो तो मेडिकल चेकअप को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, शरीर के संकेतों को समझें। अगर किसी व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द हो रहा है या दबाव महसूस हो रहा है या सांस लेने में परेशानी हो रही है, असामान्य कमजोरी है या गंभीर लक्षण महसूस हो रहे हों, तो इसे सामान्य मानकर इंतज़ार करना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अपना फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समय पर चिकित्सा लेना जीवन बचाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि श्रोताओं, दिल केवल शरीर का अंग नहीं है। हम अक्सर कहते हैं, दिल से काम करो, दिल से रिश्ते निभाओ, दिल मत दुखाओ, दिल से खुशी महसूस हो रही है। इसलिए ये समझना चाहिए कि दिल का संबंध भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए दिल की देखभाल केवल अच्छी डाइट और व्यायाम तक सीमित नहीं है। अपने लिए थोड़ा समय निकालना, परिवार के साथ हंसना, अपनों से बातें करना, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना और जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखना भी हमारे दिल के समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, सकारात्मक सोच चिकित्सा का विकल्प नहीं है। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या या लक्षण हो तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। सखियों, उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी लगेगी। चलिए, समय हो चला है मनोरंजन का, तो सुनते हैं

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीद।

0: अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: सखियों, उम्मीद है ये गीत भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अब कार्यक्रम का वो हिस्सा जिसका इंतज़ार शायद आप भी कर रहे होंगे। आज की हमारी विविधा का विषय है, खुश रहना भी एक कला है। श्रोताओं, एक सवाल आपसे, आपको खुश रहने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, हर काम आपके मन के अनुसार होना? निश्चित रूप से जीवन की मूलभूत सुविधाएँ और आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन क्या केवल पैसा हमें खुश रखने के लिए पर्याप्त होता है? क्या हम सिर्फ पैसे के लिए ही खुश रह सकते हैं? हम देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद व्यक्ति तनाव में रहता है, और कभी कभी सीमित साधनों में रहने वाला व्यक्ति छोटी सी बात पर भी दिल खोल कर मुस्कुराता है, हंसता है। तो आखिर खुशी क्या है? शायद खुशी केवल परिस्थितियों का नाम नहीं, उन्हें देखने के हमारे नज़रिए का नाम है। छोटी छोटी खुशियों को पहचानिए। हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं। जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, जब घर बनेगा तब खुश होंगे, जब बच्चे सफल हो जाएंगे तब खुश होंगे, जब सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी तब खुश होंगे। लेकिन सखियों, जीवन में परेशानियाँ पूरी तरह से ख़त्म होने का इंतज़ार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि हम आज की छोटी छोटी खुशियां खो दें। सुबह की चाय, खुश हो जाइए। बच्चे की मुस्कान, इससे खुश हो जाइए। परिवार के साथ कुछ पल, बारिश की खुशबू, सुबह का सूरज, पेड़ पौधों के बीच थोड़ी देर बैठना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी पुराने दोस्त का फ़ोन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन में रंग भरती हैं। इसलिए खुशी को हमेशा बड़ी घटनाओं से मत जोड़िए, छोटी खुशियों को पहचानना सीखिए। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। हम किसी की तस्वीर देखते हैं, किसी की सफलता देखते हैं, किसी का सुंदर घर देखते हैं, किसी की यात्रा को देखते हैं और सोचने लगते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं है? लेकिन सखियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला जीवन किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की तस्वीर नहीं होता। हर व्यक्ति के अपने संघर्ष हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी परिस्थितियां हैं। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की तुलना करने के बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर हूँ? बस यही तुलना सार्थक है। अपने लिए भी समय निकालिए। विशेषकर महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि आप परिवार के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। अपने पसंद का संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, पौधों की देखभाल कीजिए, थोड़ी देर टहलने जाइए, किसी प्रिय व्यक्ति से बात कीजिए, या बस कुछ देर शांत बैठिए। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है सखियों, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो हम अपने परिवार और समाज के लिए भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। दूसरों को खुश रखना सीखिए। खुश रहने का एक बहुत सुंदर रास्ता है, किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद, किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुन लेना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, किसी उदास व्यक्ति को फ़ोन करके पूछ लेना, आप ठीक तो हैं? कभी कभी हमारी छोटी सी कोशिश किसी दूसरे व्यक्ति के पूरे दिन को बदल सकती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब हम किसी को खुशी देते हैं तो उस खुशी की एक किरण हमारे भीतर भी लौट कर आती है। अब एक सवाल उठता है, क्या हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए? नहीं, हम इंसान हैं, हमें दुख भी होता है, थकान भी होती है, निराशा भी होती है, और कभी कभी आंसू भी आते हैं। खुश रहने की कला का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दुख को दबा दें, बल्कि इसका अर्थ है दुख को स्वीकार करके जीवन में उम्मीद की जगह बनाए रखना। रोना आए तो रो लीजिए, थक गए हों तो थोड़ा आराम कर लीजिए, किसी बात से परेशान हैं तो अपने विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए, लेकिन ये विश्वास मत खोइए कि ये समय भी गुजर जाएगा। सूरज हर रात के बाद निकलता है, पतझड़ के बाद पेड़ों पर फिर नई पत्तियां आती हैं, और कठिन समय के बाद जीवन में फिर अच्छे दिन आते हैं। इसलिए उम्मीद को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखिए सखियों। उम्मीद

कि ये जानकारी और ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है मनोरंजन का। प्रोग्राम का समय समाप्त हो चला है, तो आज हम आपको आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपकी प्यारी रेडियो सखी अर्चना उपाध्याय को दीजिए इजाज़त।

अभी आप महिला जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवानी कार्यक्रम।

नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश नरुका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आपका अपना कार्यक्रम युवाणी। साथियों, कभी गौर किया है, हम में से कई लोग अपनी जिंदगी का काफी वक्त इस बात में लगा देते हैं कि लोग हमें कितना सफल समझते हैं, हमारे पास क्या है, हम कितने स्मार्ट दिखते हैं, हमारी लाइफ कितनी शानदार है। लेकिन ये सवाल है, क्या हम उतना ही वक्त खुद को बेहतर बनाने में भी लगाते हैं? क्योंकि दोस्तों, दुनिया को कुछ देर के लिए दिखावे से प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक अपनी पहचान सिर्फ काबिलियत से ही बनाई जा सकती है। लेकिन चलिए एक छोटी सी कहानी से सुनते हैं। एक शहर में दो लड़के रहते थे। दोनों का सपना था कि एक दिन वो बहुत बड़े आदमी बने। पहला लड़का महंगे कपड़े पहनता, सोशल मीडिया पर अपनी शानदार तस्वीरें डालता और लोगों को बताता कि वो कितना आगे बढ़ रहा है। दूसरा लड़का शांत रहता, वो रोज कुछ नया सीखता, अपनी गलतियों को सुधारता और अपने हुनर पर काम करता। कुछ साल बीते, पहला लड़का आज भी लोगों को अपनी सफलता के किस्से सुना रहा था, जबकि दूसरा लड़का अपने काम से पहचान बना चुका था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने लोगों को ये बताने में वक्त नहीं लगाया कि मैं कितना काबिल हूँ। मैंने खुद को इतना काबिल बनाने की मैं अपना वक्त लगाया कि लोगों को खुद पता चल गया। और शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है। दोस्तों, दिखावा करना गलत नहीं है, लेकिन जब दिखावा हमारी मेहनत से बड़ा हो जाए तब हमें रुककर सोचना चाहिए। अगर हम विद्यार्थी हैं तो दूसरों को अपनी पढ़ाई का दिखावा करने के बजाय सच में कुछ सीखें। अगर हम नौकरी करते हैं तो सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय अपने काम को बेहतर बनाएं। और अगर हम किसी सपने के पीछे भाग रहे हैं तो अपनी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में नहीं, खुद को उस सपने के काबिल बनाने में लगाएं। याद रखिए, तालियां कुछ पल के लिए मिलती हैं, लेकिन काबिलियत पूरी जिंदगी भर साथ निभाती है। तो अगली बार जब मन करे कि दुनिया को दिखाएं कि हम कितने आगे हैं, एक बार खुद से जरूर पूछिएगा, क्या सच में मैं बढ़ रहा हूँ या सिर्फ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहता हूँ? क्योंकि असली कामयाबी वो नहीं जो हमें लोगों के सामने बड़ा दिखाए, असली कामयाबी वो है जो हमें अंदर से बेहतर इंसान बनाए। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: साथियों, कभी सोचा है, जिस दिल को हम कभी प्यार का नाम देते हैं, कभी दर्द का, और कभी किसी की यादों से जोड़ देते हैं, वही दिल बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के हमारी जिंदगी की हर सुबह को मुमकिन बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने इस दिल का उतना ख्याल रखते हैं जितना ये हमारा रखता है? दोस्तों, आज 29 सितंबर है और आज मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, यानी वर्ल्ड हार्ट डे। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दिल की सेहत और हृदय रोगों के प्रति जागरूक करना है। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के उन खास अंगों की जो सचमुच दिल रात काम करता है। क्या आपको पता है कि हमारा दिल एक दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है, और हर मिनट करीब 1.5 गैलन यानी लगभग 5.5 लीटर खून पंप कर सकता है। सोचिए, हम सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि हमें अपनी धड़कनों का एहसास भी नहीं होता, लेकिन हमारा दिल अपना काम लगातार कर रहा होता है। और एक दिलचस्प बात, एक व्यस्क इंसान का दिल लगभग एक बंद मुट्ठी जितने आकार का होता है। लेकिन दोस्तों, इतना छोटा सा अंग हमारी पूरी जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियां दुनिया में मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल है। अब ज़रा अपनी दिनचर्या पर नज़र डालिए। घंटों मोबाइल चलाना, शारीरिक गतिविधियों से दूरी, ज़्यादा नमक और तली भुनी चीज़ें, नींद की कमी और लगातार तनाव, कहीं ना कहीं हमारी ये आदतें हमारे दिल पर भी असर डालती हैं। और हाँ, हार्ट अटैक को किसी उम्रदराज लोगों की समस्या समझना भी सही नहीं है। दिल की सेहत की बात हो रही है तो एक ज़रूरी बात याद रखिए, विशेषज्ञों के अनुसार हार्ट अटैक में सिर्फ सीने में दर्द नहीं होता बल्कि सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, जबड़े पर पीठ या बांह में दर्द और अचानक असामान्य थकान जैसे संकेत भी हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखें तो गैस या थकान समझकर इंतज़ार ना करें, तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें। तो आखिर अपने दिल का ख्याल कैसे रखें? बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। रोज़ थोड़ी शारीरिक गतिविधि, संतुलित खान पान, नमक का सीमित सेवन, तंबाकू से दूरी, और समय समय पर ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच, और अगर पहले से कोई बीमारी है तो डॉक्टर के यहाँ सलाह के लिए ज़रूर जाएं। याद रखिए, दिल की देखभाल किसी एक दिन का काम नहीं बल्कि हर दिन की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। तो इस विश्व हृदय दिवस पर खुद से एक वादा ज़रूर कीजिए, दूसरों के लिए धड़कने वाले इस दिल को हम खुद के लिए भी थोड़ा वक्त देंगे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ धड़कनों की गिनती नहीं बल्कि हर धड़कन को सेहतमंद तरीके से जीने का नाम है। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: साथियों, कहते हैं कि इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग उसका दिल है। बिना रुके बिना थके हर पल धड़कता रहता है। लेकिन इस दिल की एक और खासियत है, ये सिर्फ खून ही नहीं दौड़ाता बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी खुशियों, हमारी यादों और हमारे कई अनकहे एहसासों को भी अपने अंदर समेटे रखता है। कभी यही दिल किसी की एक मुस्कान पर खिल उठता है तो कभी किसी की खामोशी से उदास हो जाता है। कभी दिल करता है कि बस यूं ही गुनगुनाते रहें तो कभी दिल की बात दिल में ही रह जाती है। तो आज के थीम सॉन्ग्स में बात

करेंगे इसी दिल की, कभी प्यार के दिल की, कभी दोस्ती के दिल की, कभी टूटे हुए दिल की, तो कभी उन उस दिल की जो हर हाल में जीना चाहता है। तो चलिए दिल की धड़कनों को संगीत की धुनों से जोड़ते हैं। दिल भी ना बड़ी अजीब अजीब चीज़ होता है, इसे समझना इतना आसान तो नहीं है। कभी छोटी सी बात पर खुश हो जाता है तो कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अधूरा सा महसूस करता है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि दिल को किसी की आदत लग जाए तो फिर उसकी मौजूदगी से ज़्यादा उसकी गैर मौजूदगी महसूस होने लगती है। कभी कभी तो लगता है कि दिल के अंदर भी एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जहाँ कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ अधूरे ख्वाब हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम चाहकर भी भुला नहीं पाते।

हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं, सोचते हैं कि जब कोई बड़ा सपना पूरा होगा, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी दिल से खुश होंगे। लेकिन कभी सोचा है कि दिल से खुशी कभी नहीं होती? सुबह की पहली चाय, किसी पुराने दोस्त का अचानक फ़ोन आ जाना, परिवार के साथ बिताया हुआ वक्त, या फिर अकेले में अपना पसंदीदा गाना सुनना, ये छोटी छोटी बातें दिल को वो सुकून देती हैं जिसे बड़ी से बड़ी चीज़ भी कभी कभी नहीं दे पाती। इसलिए दोस्तों, अपने दिल को खुश रखने के लिए किसी खास दिन का इंतज़ार तो बिल्कुल मत करिए। जिंदगी आज है और दिल भी आज ही धड़क रहा है। तो दोस्तों, दिल की इन छोटी छोटी बातों के साथ अब इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आज के गानों ने हमारे दिल के किसी कोने में छिपी कोई पुरानी याद ज़रूर जगा दी होगी। बस अपने दिल का ख्याल रखिए, अपनों को वक्त दीजिए और ज़िंदगी को थोड़ा दिल खोल कर जीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे ओम। मिलते हैं फिर किसी नई थीम, नई धुन और नए एहसास के साथ। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी का आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।

0: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इसे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज
3: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा शाम 7 का आकाशवाणी जयपुर से। लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:15 का। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का समय रहेगा रात 8:45 का। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 और 10:20 पर। रात 10 का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाइलाइट्स कैप्सूल का हिंदी में

समाचारों का समय रहेगा रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11 बजे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको बता देते हैं कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

कल सुबह सवेरे सभा की शुरुआत होगी 5:51 पर। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा सवेरे 6 बजे। वंदनवार चिंतन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सवेरे 6:05 पर। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम झरोखा का। रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सवेरे 6:35 पर। संगीत सरिता ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:45 पर। सवेरे 7 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम नमस्कार अलवर का। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सवेरे 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा सवेरे 9 बजे और दोपहर 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से समय रहेगा 9:10 का। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सवेरे 9:45 पर, 10:01 पर, 11:01 पर, 12:05 पर, 12:16 पर, 1:05 पर और 2:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर 12 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2 बजे और साथ ही आप सुनेंगे दोपहर समाचार 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवानी। शाम 6 बजे और रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम ग्राम भारती ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। रात 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का आकाशवाणी दिल्ली से। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 का और 10:20 का। रात 10 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाइलाइट्स का। और इसके साथ हमारी कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे हैं फिल्म एक दूजे से, एक दूजे के लिए से ये गीत। गीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और संगीत है प्रसाद का। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जनता विकास की पक्षधर और सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद का भरोसा दिलाया। विश्व हृदय दिवस पर दिल की बीमारियों की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए संतुलित खानपान और व्यायाम पर जोर। और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अब तक 48 पदक अपने नाम किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के चहुमुखी विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने निकाय चुनावों की जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास चाहती है और सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कांग्रेस पार्टी की ओर से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।
1: वन स्टेट वन इलेक्शन का जो हमारा संकल्प था, एक चरण हमारा निकाय चुनाव का पूरा हुआ है, दूसरा तुरंत हमारा पंचायत चुनाव का चरण है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से, आप सबने देखा है कि 2.5 साल में लगातार हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो आप सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से आरोप लगाती है, जब वो हारने लगती है तो इस तरह के आरोप लगाती है। प्रमाण कोई नहीं, लेकिन उसका काम आरोप लगाना है।
0: श्री शर्मा इसके बाद झालावाड़ पहुंचकर संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद उनका किशनगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है। श्री शर्मा कल बाड़मेर दौरे पर रहेंगे। उनका बाछड़ाऊ गांव में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।

राज्य सरकार ने राजकीय कार्मिकों और 70 वर्ष की आयु के पात्र पेंशनर्स तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए कंपोजिट सैलरी अकाउंट CSAP लागू किया है। इसके जरिए लाभार्थियों को एकीकृत और सुगम बैंकिंग सेवाओं के साथ वित्तीय तथा बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी। वित्त विभाग के शासन सचिव हरीश लड्ढा ने बताया कि इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि CSAP के तहत बेहतर बैंकिंग सुविधाओं से युक्त जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट पर उपलब्ध होगा। इस पर ऑनलाइन राशि हस्तांतरण की सुविधा निशुल्क रहेगी। साथ ही आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए रियायती ऋण सुविधाएं भी मिलेंगी। पैकेज में लाभार्थियों के लिए व्यापक बीमा सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्नत सुविधाओं वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। छठे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिसंबर में होने वाले CS सम्मेलन के लिए राज्य स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में नीति आयोग की ओर से प्रस्तावित राजस्थान के 5 प्राथमिक क्षेत्रों अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, जलवायु अनुकूल कृषि, औद्योगिक विकास तथा उद्यानिकी आधारित कृषि विकास पर चर्चा की गई। बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सम्मेलन की रूपरेखा की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद करेगी। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भुगतान 48 घंटे के भीतर हो जाए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 के दूसरे दिन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है जिससे किसानों को

0: सम्मेलन रबी अभियान 2026 के दूसरे दिन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके। इसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीके से गोदामों की व्यवस्था और मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने भरोसा दिलाया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले नए बाजार का लाभ उठाकर देश के कृषि उत्पादों, फलों, सब्जियों और अनाज को वैश्विक बाजारों से जोड़ेगा। श्री चौहान ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में मदद मिलेगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसान। ये तय किया तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। एक बार खरीदी लंबे समय तक चलती, अब लंबे समय में फिर कई तरह की गड़बड़ी की संभावनाएं होती है, इसलिए खरीदी की आप पूरी व्यवस्था जिसमें किसान का आए, समय पर किसान को पैसा मिल जाए, पहले से व्यवस्था हम करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के आज 4 साल बाद चुनाव हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करके आदेश जारी करने को कहा है। चुनाव अधिकारी एके पांडे ने बताया कि आरसीए के अध्यक्ष के लिए धनंजय सिंह और ब्रज किशोर उपाध्याय के बीच मुकाबला है। वहीं सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 6 पदों पर कुल 11 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। आरसीए प्रशासक भास्कर ए सावंत ने बताया कि मतदान से पहले आरसीए की एजीएम हुई।
2: आज एजीएम कंडक्ट करके इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इलेक्शन प्रक्रिया हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान सरकार के वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी हम इलेक्शन ऑफिसर को दे रहे हैं।
0: राजसमंद में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 2 दलालों को 25-25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के एएसपी हिम्मत सिंह ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। परिवादी को सीजीएसटी की ओर से दिए गए नोटिस से जुड़े मामले को निपटाने के एवज में ये राशि मांगी गई थी। आज विश्व हृदय दिवस है। हृदय रोगों की रोकथाम और उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है डोंट मिस अ बीट। इसका अर्थ है दिल की बीमारी के छुपे हुए या हल्के शुरुआती संकेतों को पहचानना और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये विषय लोगों को दिल की बीमारी के लक्षणों को पहचानने, जोखिम को नियंत्रित करने और समय पर चिकित्सा सहायता लेने में याद दिलाता है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और व्यायाम हृदय की सेहत के लिए जरूरी है। साथ ही समय समय पर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवानी चाहिए।
3: अगर आपको थोड़ा सा भी हृदय संबंधी समस्या का लग रहा है तो अपने चिकित्सक की सलाह लें और डायग्नोसिस करें, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है ईसीजी, फिर आता है 2D इको एंड देन एंजियोग्राफी और अदर इन्वेस्टिगेशंस। एज ए योग प्रशिक्षक और हृदय रोग विशेषज्ञ की भांति मैं आप सबको कहूंगा, डोंट मिस योर मेडिटेशन। अपना ध्यान कभी मिस न करें, योगासन प्राणायाम कभी मिस न करें और यकीन जानिए कि आपका हृदय रहेगा स्वस्थ। स्ट्रेस फ्री रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने हृदय को स्वस्थ रखें।
0: प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 सितंबर से मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न रैली, जागरूकता सभा सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि अभियान के तहत 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तनाव, चिंता या किसी परेशानी के समय परिवार और दोस्तों से बात करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान से जुड़ने और आसपास के लोगों को जागरूक करने की अपील की है। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के संचार

0: सहायक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का लक्ष्य स्पष्ट किया है कि संकट आने से पहले ही तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और संचालन तैयारियों को प्रदर्शित किया है।
1: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जापान में आयोजित एशियाई खेल 2026 में भारत ने 5 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदक जीतकर कुल 48 पदक हासिल कर लिए हैं। आज 11वें दिन भारत ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप शूटिंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक की भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जनता विकास की पक्षधर और सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद का भरोसा दिलाया। विश्व हृदय दिवस पर दिल की बीमारियों की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए संतुलित खानपान और व्यायाम पर जोर। और जापान में आयोजित एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने अब तक 48 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं विशारद जोशी। पाली जिले में पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियां हुई, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई, वहीं विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविर लगाए गए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रधान पदों के वर्गवार और महिला आरक्षण की लॉटरी जिला कलेक्टर रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में पिछले दिनों जिला परिषद सभागार में निकाली गई। लॉटरी के माध्यम से विभिन्न पंचायत समितियों के वार्डों का आरक्षण तय किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों की जांच, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को हुए, 14 सितंबर को मतगणना हुई। पार्षदों के चुनाव के बाद जिले की नगर निगम सहित 9 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के चुनाव हुए और परिणाम घोषित हुए। नगर निगम की महापौर सहित जिले की 9 नगर पालिकाओं में भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। नगर निगम पाली से नमिता बोबकिया, सोजत सिटी से कीर्ति, सोजत रोड से भावना धंजा, मारवाड़ जंक्शन से देवाराम, सादड़ी से संजय कुमार बोहरा, बाली से देवीबाई, खुड़ाला फालना से उमा कंवर, सुमेरपुर से चतुर्भुज शर्मा और तखतगढ़ से जयश्री विजयी रहे। वहीं रानी में दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को 10-10 वोट मिलने पर लॉटरी के माध्यम से भाजपा के बाबूलाल अध्यक्ष पद पर चुने गए। पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां भी जिले में पिछले दिनों संपन्न हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने बांडी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए। न्यायालय ने नदी के किनारे 100 मीटर तक नए निर्माण और विकास कार्यों पर रोक लगाई है। नदी के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी रोक लगाई गई है। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय ने जवाई क्षेत्र में तेंदुए के आवास, गुफाओं, प्रजनन स्थलों और वन्यजीव कॉरिडोर के आसपास नए व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगा दी है। तेंदुए के आवास के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को निर्माण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है। पहाड़ियों में खनन और नई पर्यटन गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। वन विभाग को 8 सप्ताह में

0: केंदुआ आवास की मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें रक्तदान शिविर, मेरे सपनों का भारत, चित्रकला, सेवा की कहानी, सेवा ज्योति कलश यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु, सेवा के रंग, राष्ट्र के संग और सुशासन सेवा संवाद सहित विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 19 से 25 सितंबर तक पंचायत समिति स्तर पर सेवा शिविर लगाए गए। इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम जन की समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं 25 से 27 सितंबर तक आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंगोली, चित्रकला, कहानी और कविता पाठ के आयोजन हुए। स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों के तहत स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर मंडल की ओर से मावली और मारवाड़ जंक्शन सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों, कॉलोनियों और विद्यालयों में रेल अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर में 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी दिवस पर पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यार्थियों के लिए काव्य पाठ, निबंध लेखन, कविता लेखन, नारा लेखन, हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग, आशुभाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना रहा। गणेश चतुर्थी का पर्व जिले में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शोभा यात्राएं निकाली गईं, मंदिरों, मोहल्लों और घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गईं। सिद्ध पीठ गणेश मंदिर में मेला भरा। अनंत चतुर्दशी पर शोभा यात्राओं के बाद सिरे घाट पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस वर्ष मॉनसून के दौरान कम बारिश होने से जिले में पेयजल स्रोतों के रूप में उपयोग किए जा रहे बांधों में पानी की उपलब्धता कम है। आगामी समय में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो जनता विकास री हिमायती और सरकार जनता री उम्मीदां पूरी करनो तय कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पात्र किसानाओं तुअर, उड़द और मसूर री पूरी साख सरकारी मोल माथे खरीदन रो भरोसो दिरायो। विश्व हृदय दिवस रे मौके दिल री बीमारियां री रोकथाम सारू संतुलित खान पीन और कसरत माथे जोर दियो चियो। और जापान माय चाल रहा एशियाई खेलना माय निशानेबाज नीरू ढांडा सोनारा तमगा माथे निशानो लगायो। भारत हाल ताई 48 पदक जीतिया। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज कोटा माए भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ताओं सागे बातचीत कीनी। वह लारला दिनाभ्या स्थानीय निकाय चुनाव माए जीत ने कार्यकर्ताओं री मेहनत और जनता सागे जुड़ाव री जीत बताई। मुख्यमंत्री कहो कि प्रदेश री जनता विकास री मर्जी रखे है और सरकार जनता री उम्मीदा पूरी करनो तय कीनो है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री शर्मा संवैधानिक संस्थावां रा बेजा इस्तेमाल रा कांग्रेस पार्टी रा आरोपां ने खारिज करती ना।
2: वन स्टेट वन इलेक्शन का जो हमारा संकल्प था, एक चरण हमारा निकाय चुनाव का पूरा हुआ है, दूसरा तुरंत हमारा पंचायत चुनाव का चरण है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पूरी तरह से, आप सबने देखा है कि 2.5 साल में लगातार हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो आप सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से आरोप लगाती है, जब वो हारने लगती है तो इस तरह के आरोप लगाती है। प्रमाण कोई नहीं, लेकिन उसका काम आरोप लगाना है।
1: ई पाछे मुख्यमंत्री किशनगढ़ पधार्या, जठे मारो भाजपा रा कार्यकर्ताओं सागे बातचीत रो कार्यक्रम है। श्री शर्मा रो काल बाड़मेर रा दौरा रो कार्यक्रम है। वे बाछड़ाऊ गांव में जनसभा ने संबोधित करेला। राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियां अर 70 साल ताईं री उम्र रा पेंशन लेवण वाला पात्र लोगां अर सरकारी उपक्रमां रा कर्मचारियां सारू

0: कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज CSAP लागू किनो है। इन जरिए एकीकृत और आसान बैंकिंग सुविधा सागे माली और बीमा हिफाजत मिलेला। वित्त विभाग रा शासन सचिव हरीश लड्ढा बतायो कई सारू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक समेत 12 सरकारी बैंक ने शामिल करी चिया है। वे बतायो कि CSAP रा तहत जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट रो सुबी तो ही मिलेला, जहां थे ऑनलाइन रकम रा लेन देन मुफ्त करिया जा सकेला। इस आगे रहवास, बनाई लिखाई, वाहन और खुदरी जरूरत सारू रियायती रेट माथे कर्ज रासुबिताई मिलेला। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पात्र किसानारी तुअर, उड़द और मसूर री पूरी साख सरकार कानियों सरकारी मूल माथे खरीदी रो भरोसो दिरायो है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 रा दूजा दिन रा सत्र में बोल रहा है। श्री चौहान कहो कि साखानी बिक्री पाछे 48 घंटा में चुकारो करनू तय करियो जावेला। केंद्रीय कृषि मंत्री कहो कि सरकार किसाना ने साखा रो फायदेमंद मूल दिरावण री रणनीति बना रही है। श्री चौहान अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौताओं खुलन वाला नुआ बाजार रो फायदो उठार देश रा खेतीबाड़ी जुड़िया उत्पादा फला तरकारियां और अनाज री दुनिया भर में बिक्री रो भरोसो दिरायो।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसान। ये तय किया तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। एक बार खरीदी लंबे समय तक चलती, अब लंबे समय में फिर कई तरह की गड़बड़ी की संभावनाएं होती है, इसलिए खरीदी की आप पूरी व्यवस्था जिसमें किसान का आए, समय पर किसान को पैसा मिल जाए, पहले से व्यवस्था हम करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रा 4 साल पाछे आज चुनाव भया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट चुनाव रा नतीजा माथे रोक लगा दीनी। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट नू ई मामला री बेगी सुनवाई कर और जरूरी हुकम देवन बाबत कहो। RCA रा अध्यक्ष ओहदा सारू धनंजय सिंह और ब्रिज किशोर उपाध्याय बीच मुकाबलो है। इस आगे सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 6 ओहदा माथे 11 उम्मीदवार चुनाव लड़िया है। RCA रा प्रशासक भास्कर ए सावंत बतायो कि वोट देवणु पहली RCA री सालाना मीटिंग भी
2: आज AGM कंडक्ट करके इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इलेक्शन प्रक्रिया हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान सरकार के वकील है उन्होंने ये कहा है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, सर्टिफाइड कॉपी हम इलेक्शन ऑफिसर को दे रहे हैं।
0: राजसमंद में आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम 2 दलाला ने 25-25 लाख रुपए की घूस लेता रंगिया हाथा पकड़ लीना। ACB रा ASP हिम्मत सिंह बतायो कि एक जना ने CGST री ओरों दिया जा नोटिस जुड़िया मामला रा निपटारा री एवज माई आ रकम मांगन रो आरोप है। आज विश्व हृदय दिवस है। दिल री बीमारियां री रोकथाम एरवारा असर रे बारा माई जाग चकावन सारू हर साल 29 सितंबर ने ओ दिन मनायो जावे है। इन रो ई साल रो मुद्दो डोंट मिस अ बीट, दिल की बीमारी के छुपे हुए या हल्के शुरुआती संकेतों को पहचानना और उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना राखी चियो है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा सोशल मीडिया पोस्ट जरिए कहो कि ओ दिन दिल री बीमारी रा लक्षणा रिठाकरण, जोखिम न काबू करण और टेम सर इलाज करावन री याद दिरावे है। जयपुर रा SMS अस्पताल माय दिल री बीमारियां रा डॉक्टर मोहित शर्मा आकाशवाणी सागे बातचीत रे दौरान बतायो कि संतुलित खान पान, जरूरी नींद और कसरत दिल री सेहत सारू जरूरी है।
3: अगर आपको थोड़ा सा भी हृदय संबंधी समस्या का लग रहा है तो अपने चिकित्सक की सलाह लें और डायग्नोसिस करें, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है ECG, फिर आता है 2D इको,

0: एंड देन एंजियोग्राफी और अदर इन्वेस्टिगेशंस। एज ए योग प्रशिक्षक और हृदय रोग विशेषज्ञ की भांति मैं आप सबको कहूंगा, डोंट मिस योर मेडिटेशन, अपना ध्यान कभी मिस न करें, योगासन प्राणायाम कभी मिस न करें, और यकीन जानिए कि आपका हृदय रहेगा स्वस्थ, स्ट्रेस फ्री रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने हृदय को स्वस्थ रखें।
1: प्रदेश माए मानसिक स्वास्थ्य रा प्रति जनता माए जाग जगावन सारू 10 सितंबर उ 10 अक्टूबर ताई मानसिक स्वास्थ्य महीनो मनायो चार्यो है। इन तेत रैलियां और सभा समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या चार्या है। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बतायो के अभियान रा तेत 10 अक्टूबर ने मानसिक स्वास्थ्य शपथ दिराई जावेला। वे बतायो के तनाव चिंता या किनी परेशानी रे बगत परिवार और दोस्तां सागे बातचीत करनो और जरूरत पड़िया जानकारां री मदद लेनो जरूरी है। वे जनताओं मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल शपथ अभियान नु जुड़बा और आरे सारे रा लोगां माए जाग जगावन री अरज कीनी। नौसेना रा कमांडरां रो ई साल रो दूजो सम्मेलन आज नई दिल्ली माए शुरू भयो। 3 दिन रा इन सम्मेलन में नौसेना रा आला अहलकार और दूजा कमांडर शिरकत कर रहा है। रक्षा मंत्रालय रा मुजब सम्मेलन में फौजी और रणनीतिक लेवल मत है नौसेना री तैयारियां रो जायजो लियो जा रियो है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो के संकट आवणो पहले मजबूत तैयारी सागे वानो सामो करण सारू तैयार रहनो चाहिए। रक्षा मंत्री कहो के ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में देश री ऊर्जा पूर्ति लाइन री हिफाजत और देश रा भला सारू नौ सेना रा पेशेवर बूता और संचालन तैयारियां रो दर्शाव करी चियो है।
2: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि मीडिया और पत्रकारिता जनता रा नजरिया ने रूप देवन और जाग जगावन माए खास काम करे है। वे आज मुंबई माए फिक्की फ्रेम्स रा उद्घाटन जलसा माए बोल रहा है। श्री शेखावत कहो कि तेजियों बदल रही दुनिया माए उत्तरदायी और प्रामाणिक सामग्री तैयार करनी जरूरी है।
3: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
1: अरब खबर एशियाई खेलों। जापान में चल रहा एशियाई खेलों में भारत हाल ताई सोना रा 5, चांदी रा 21 और कांसा रा 22 तमगा समेत 48 पदक जीत लेना है। खेला रा 11वां दिन आज भारत री निशानेबाज नीरू ढांडा महिला ट्रैप शूटिंग होड़ माए सोना रो तमगो जीत्यो। इनु पहली आज ही महिला ट्रैप टीम होड़ माई नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर री जोड़ी चांदी रो तमगो जीत्यो। मुक्केबाजी रा 90 किलोग्राम और 32 वजन वर्ग माए नरेंद्र बरवाल कांसा रो तमगो जीत्यो। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ली राओ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो जनता विकास री हिमायती और सरकार जनता री उम्मीदा पूरी करनो तय कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पात्र किसानों तुअर उड़द और मसूर री पूरी साख सरकारी मूल माथे खरीदी करण रो भरोसो दिरायो। विश्व हृदय दिवस रे मौके दिल री बीमारियां री रोकथाम सारू संतुलित खान पीन और कसरत माथे जोर दियो चियो। और जापान माए चाल रहा एशियाई खेला माए निशानेबाज नीरू ढांडा सोनारा तमगा माथे निशानो लगायो। भारत हाल ताई 48 पदक जीत्या। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली चिकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में ना आया, मैं टूटी झोपड़ी में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए अपना किसान। किसान वाणी सुनबाला सगला काश्तकार भाई बहना ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाई ली बुआ सब ने ढो गरे जैसा। अश्विनी भाई आपने भी घने मानू राम राम
7: सा। चंचल थाने भी घणो घणो राम राम।
6: और देखो आज ना 29 सितंबर ने पूरी दुनिया में एक अनूठो दिवस मनायो जावे है, जिन्हें कहवे है विश्व हृदय दिवस।
7: बिल्कुल,
6: दिल की जो सेहत होवे है ई के प्रति लोगों ने जागरूक करवा की खातिर और लोगों ने ई को महत्व समझावा की खातिर यो दिन मनायो जावे है। वर्ष 2000 सु यो दिन मनायो जा रहे है, और कोई भी दिवस यदि महत्वपूर्ण है या भी क्यों मनावो सार्थक है जब आपा भी जागरूक हो जावा।
7: बिल्कुल, और आपना हृदय ने आपा कई तरीका से रख सका था भी के बारे में बताया गया, तो आपने भी का माने खान पान हुई हो, रहन सहन हुई हो, और आपनों व्यायाम भी विषय बहुत ही जुड़े से।
6: बिल्कुल, तो यह बात तो हुई कि आज को जो एक अनोखो दिवस पूरी दुनिया मना रही है आपा भी मना रहे हैं, और आपा अपनी सेहत के प्रति हृदय के स्वास्थ्य के प्रति सावचेती रखा। और अब सावचेती यही है कि आपा जानकारियां की तरफ चला, तो अब मैं चाहूं हूं कि आप जानकारियां दिलाओ और मैं बैठर सुनू।
7: बिल्कुल किसान भाइयों, आज हमारे बीच जानकारी देने के लिए पधारे हैं तेज प्रताप सिंह जी, जो है विषय विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र चुमू टांकड़ा, जिनसे आज हम जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती का महत्व एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करें, राम राम साहब।
8: राम राम साहब किसान बंधुओं।
7: तेज प्रताप जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि प्राकृतिक खेती क्या होती है।
8: बहुत अच्छा है आपने प्रश्न किया। वैसे तो हमारे किसान बंधु अधिकतर प्राकृतिक खेती के बारे में जानते हैं, और वैसे भारत सरकार हमारा 2 साल प्राकृतिक खेती नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के रूप में ये पूरा प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है
7: जी।
8: तो अधिकतर किसान इसको कर भी रहे हैं प्राकृतिक खेती के को अपने खेत पर, और अधिकतर किसानों तक प्राकृतिक खेती के बारे में पहुंच चुका है कि प्राकृतिक खेती क्या होता है। लेकिन फिर भी अपने किसान को जानना चाहिए कि प्राकृतिक खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फसलों की वृद्धि तथा उत्पादन हेतु प्राकृतिक रूप से तैयार खाद तथा किसान के पास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसके खेत पर किसान के

0: खेत पर जो संसाधन उपलब्ध है वही उसी संसाधन का प्रयोग करके फसल पोषण किसान को जो है ना तैयार करना है। कृषि में उपयोग होने वाले कोई भी संसाधन बाजार से नहीं खरीदना है। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जा सकता है जो प्राकृतिक आदानों पर आधारित है। यह एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के अधिकतम प्रयोग को सुविधा मिलती है।
1: बिल्कुल सर, प्राकृतिक खेती के स्तंभ कौन कौन से होते हैं जिन पर संपूर्ण फसलोत्पादन आधारित होता है?
0: देखिए, प्राकृतिक खेती के 5 स्तंभ होते हैं जिसपे पूरी प्राकृतिक खेती आधारित है। फसल बिजाई से लेकर के और फसल कटने तक ये 5 स्तंभों का जो प्राकृतिक खेती के जिसको हम पिलर कहते हैं
1: जी।
0: जिस तरह से पहला पिलर है आपका जो है ना बीजामृत, दूसरा पिलर है आपका जो है ना जीवामृत, तीसरा पिलर है आपका निमास्त्र, चौथा पिलर है आपका आच्छादन, पांचवा पिलर है आपका वापसा। तो ये 5 स्तंभों का प्रयोग करके हम अपनी जो है ना फसल को और अपनी मिट्टी को अच्छा जो है ना बना सकते हैं, फसल का उत्पादन बढ़िया ले सकते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बना के रख सकते हैं।
1: बिल्कुल तेज प्रताप जी, अभी आपने बताया प्राकृतिक खेती का एक स्तंभ जीवामृत जिसकी बात कर रहे हैं, किसान भाई इसको कैसे तैयार कर सकते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए?
0: ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामान्य किसान को भी जो यदि प्राकृतिक खेती नहीं कर रहा है उसको भी ये जो है ना विषय जानने का अधिकार है
1: जी।
0: जिस तरह से आप कुछ मत कीजिए किसान बंधु, यदि आप किसानी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके घर पे जो है ना जानवर है। लेकिन एक बात अपने जेहन में बैठा लीजिए किसान बंधु कि यदि आप प्राकृतिक खेती के बारे में सोच रहे हैं
1: जी।
0: तो इसका मतलब कि जो हमारी भारतीय नस्ल की गाय है, जिस तरह से देसी गाय जिसको अभी यदि हम सामान्य भाषा में कहें, तो प्राकृतिक खेती तभी आपके खेत पर जो है ना सक्सेस होगा, सफल हो पाएगा जब आप जो है ना एक देसी गाय रखेंगे
1: जी।
0: और देसी गाय तो अपनी संस्कृति में भी जो है ना शुभ माना गया है। तो यदि आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो आपको जो है ना देसी गाय के गोबर की आवश्यकता पड़ेगी, देसी गाय के गोमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी
1: जी।
0: तो ये इस वजह से आपको देसी गाय अपने घर पे रखना बहुत जो है ना जरूरी है। आपको करना क्या है, जिस तरह से जीवामृत, आप शब्द से ही पकड़िए किसान बंधु कि जीवामृत मतलब जीवों का एक जो है ना अमृत, जीवों का एक जो है ना बहुत बड़ा जो है ना अंबार, ढेर, जिसमें जो है ना अपनी धरती को हमने जो है ना अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक डाल डाल करके जो हमारे जमीन के जीव हैं, जो हमारे लिए, जो हमारी फसल के लिए और जो हमारे जमीन के अंदर जो पोषण उपलब्ध है उसको एक वाहक का काम करते हैं, ये उन जीवों को हमने अपने धरती से, अपने जमीन से समाप्त कर दिया। तो इस वजह से जीवामृत आपको बनाना जो है ना सीखना है। अब जीवामृत में क्या करना है, आपको एक जो है ना ड्रम लेना है, 200 लीटर का आप ड्रम लीजिए। उसमें क्या कीजिए कि आप 180 लीटर जो है ना पानी लीजिए, फिर उसमें आप जो है ना 10 लीटर जो है ना गोमूत्र डाल दीजिए, आप जो है ना 10 किलो जो है ना देसी गाय का गोबर डाल दीजिए, 2 किलो जो है ना बेसन डाल दीजिए, आधा से 1 किलो बरगद या पीपल या खेजड़ी के नीचे की जो है ना 6 इंच ऊपर की मिट्टी आप जो है ना डाल दीजिए और 2 किलो आप जो है ना गुड़ डाल दीजिए। ये जो मैं सामग्री बताया हूँ किसान बंधु, इसको एक साथ ड्रम में डाल करके और इस ड्रम को जो है ना छाये में रखिए, किसी जो है ना पेड़ के नीचे रखिए या जहाँ पे जो है ना सूर्य की सीधा रोशनी नहीं आ रही हो वहां पे आपको रखना है। और इसको क्या कीजिए कि आप जो है ना ड्रम को किसी डंडे के सहारे से आप इसको 3 दिन तक, सुबह और शाम, 3 दिन का मतलब कि आपका 72 घंटा हो गया किसान बंधु, तो आप 3 दिन तक इसको जो है ना घुमाते रहिए, सुबह और शाम को घुमा दीजिए। तो ये आपका क्या होगा, जीवामृत मतलब जीवों का एक जो है ना ढेर, मतलब जो आपने गूलर, बरगद, पीपल के नीचे की 6 इंची की मिट्टी जो लिए हैं उसमें जो है ना जीवों का अंबार है जो हमारी जमीन के लिए बहुत ही जो है ना फायदेमंद है। तो ये 72 घंटे में आपका जीवामृत 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप

0: क्या कीजिए कि आप यदि मान लीजिए कि आपने ड्रिप लगा रखे हैं, तो ड्रिप लगा रखे हैं तो आप इसको छान करके और ड्रिप के माध्यम से अपने जो है ना खेत में बहा दीजिए। आपका फवारा है, मिनी फवारा है या फवारा है तो आप इसको छान करके और आप जो है ना आप वेंचुरी के माध्यम से आप इसको जो है ना फवारा चला दीजिए। तो इसको क्या करना है कि 200 लीटर आपका कच्चा 4 बीघा मतलब 1 एकड़ में आपको इस पे, यदि किसान बंधु ये यदि ज्यादा भी चला जाता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो है ना अमृत है, जीवामृत मतलब जीवों का अमृत, ये जमीन का अमृत है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं इसे शुरू में ही कहा किसान बंधु कि इसको आप सामान्य किसान भी हमारा अपने खेत में बना करके इसका उपयोग करके अपनी जमीन की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बना के रख सकता है।
1: जी तेज प्रताप जी, अभी देखिए रबी की फसलों की बुआई का समय आने वाला है, प्राकृतिक खेती में बुआई से पूर्व बीज को कैसे उपचारित कर सकते हैं?
0: देखिए ये जिस तरह से आप सामान्य हमारा किसान भी जानता है कि भाई अपन जिस तरह से पोलियो का ड्रॉप क्यों अपन बच्चे को पिलाते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना सुरक्षित रहे, ठीक है
1: जी,
0: 2 बूंद पोलियो और हमारा जीवन सुरक्षित, बच्चे का जीवन सुरक्षित। उसी तरह से अपने को क्या करना है, जो बीज है उसको जो है ना सुरक्षित करना है, जब वो जमीन में जाए तो कोई कीड़ा ना लगे, कोई रोग ना लगे, मतलब जब तक उसका जो है ना इम्ब्रियो जिसको कहते हैं, वो उसका भ्रूण जैसे कहते हैं, जब तक वो जो है ना बाहर जमीन से आ जाए, आने तक उसकी सुरक्षा जो है ना बनी रहे, 10 से 12 दिन तक उस बीज की सुरक्षा बनी रहे, उसके चारों तरफ उसका आवरण बना। तो इसको करना क्या अपने सामान्य सी बात है, मतलब बीज को आप जो है ना उपचारित कीजिए। प्राकृतिक खेती में बीज को कैसे उपचारित करना है, आपको क्या करना है कि 5 किलो जो है ना देसी गाय का गोबर लीजिए। अब 5 किलो देसी गाय के गोबर को आप जो है ना किसी सूती कपड़े में बांध करके और किसी जो है ना पानी में उसको डुबो करके आप जो है ना किसी बर्तन में 10 से 12 घंटे तक जो है ना आप रख दीजिए। और आप जो है ना 50 ग्राम जो है ना चूना लीजिए, 50 ग्राम चूना को भी आप जो है ना 1 लीटर पानी में 10-12 घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपने 5 किलो गोबर आप जो है ना पानी में डीप कर रखे हैं, 10-12 घंटे बाद आप उसको निकालिए और उसको जो है ना निचोड़ करके उसका जो रस है उसको आप जो है ना बाहर जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है रस है उसको आप जो है ना निचोड़ करके उसको आप एक बर्तन में आप जो है ना उसको इकट्ठा कर लीजिए। चूनो जो आप भिगो रखे हैं उसको भी आप जो है ना छान लीजिए, छान करके उसका भी पानी उसी जो 5 किलो गोबर से उसमें आप उसको मिला दीजिए। और इसी में आप क्या कीजिए कि आप जो है ना 5 लीटर जो है ना देसी गाय का गोबर मिला लीजिए। अब आपने जो आपने गोबर से जो एक्सट्रैक्ट से जो आप निचोड़े हैं वो 50 ग्राम चूना जो हो गया वो, और फिर उसके बाद आपका 5 लीटर जो है ना गोमूत्र, इन सबको मिला करके अब ये आपका जो है 1 क्विंटल बीज के लिए आपका जो है ना ये सारा मटेरियल आपका तैयार हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, प्लास्टिक के पन्नी आप जो है ना बीज को फैला करके और ये जो बीजामृत आपका तैयार हुआ है बीज के ऊपर चारों तरफ से छिड़क करके उसको अच्छे से दोनों हाथ से मिक्स करके और फिर 1-2 बार 2-3 बार जब तक पूरा बीज भीग ना जाए, उसके बाद हल्का सा जो है ना छाए में सुखा करके उसके बाद फसल कीजिए, बीज की जो है ना बिजाई कर दीजिए आप।
1: बिल्कुल किसान भाई, हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। तेज प्रताप जी, प्राकृतिक खेती में कीट प्रबंधन अपन किस तरीके से कर सकते हैं?
0: देखिए ये प्रश्न आपका सही है, जिस तरह से अपन सामान्य हमारा किसान भी कहता है कि भाई प्राकृतिक खेती तो हम कर लें, भाई काटने वाले कीड़े आते हैं, रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, तो उनका हम जो है ना निदान कैसे करें। तो आपको करना क्या है, आप इसमें जो है ना बहुत सामान्य सी बात है किसान बंधु, आप जो है ना सबसे अच्छा है कि कीट प्रबंधन के लिए आप जो है ना निमास्त्र बनाइए, आप अग्नियास्त्र बनाइए, आप ब्रह्मास्त्र बनाइए, जैसा कीट है वैसा है आप जो है ना बना लीजिए, जिस अग्नियास्त्र बना लीजिए, ब्रह्मास्त्र बना लीजिए, निमास्त्र एक सामान्य सा एक आपको जो है ना सबसे पहले मैं निमास्त्र, जिस तरह से रस चूसने वाले जितने कीड़े हैं, जिस मान लीजिए कि सफेद मच्छर है, आपका जेसिड है, एफिड है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप निमास्त्र अपने घर पे ही बना सकते हैं किसान बंधु, कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको जो ना एक ड्रम लेना है जैसे आप जीवामृत में ले रहे थे, और उसको आप क्या कीजिए कि उस ड्रम में 100 लीटर पानी ले लीजिए, 5 किलो आप नीम की निमोली या आप जो है ना नीम

0: की पत्ती ले लीजिए, उसको अच्छे से कूट करके आप उस ड्रम में 100 लीटर पानी में 5 किलो आप नीम की निमोली या नीम की पत्ती डाल दीजिए। आप जो है ना 2 किलो जो है ना देसी गाय का गोबर डाल दीजिए और 10 लीटर आप जो है ना गोमूत्र डाल दीजिए। ये डाल करके इनको क्या कीजिए कि आप 4-5 से 7 दिन तक आप इसको सुबह शाम जो है ना सेकिंग कर दीजिए, मतलब उसको चला दीजिए ठंडे के सहारे। तो ये क्या होगा, ये एकदम जो है ना जो नीम की पत्ती है निमोली एकदम डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, जैसे ही मान लीजिए कि आपके खेत में कोई जो है ना चूसने वाला कीड़ा सफेद मच्छर जेसीड एफिड दिखे, तो आप क्या कीजिए, यदि मान लीजिए कि कम कीड़ा दिख रहा है तो आप क्या कीजिए 5% का मतलब 100 लीटर पानी में 5 लीटर मिला करके और शाम के टाइम स्प्रे कर दीजिए। यदि आपके खेत में ज्यादा थोड़ा कीड़ा मच्छर मक्खी दिख रहा है तो आप जो है ना 10 लीटर लेकर के निमास्त्र को 100 लीटर पानी में मिला के 10% का हो गया फिर उसको जो है ना स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से ये सामान्य सी चीज है किसानों, प्राकृतिक खेती में आप अपने कीड़ों को भी आप जो है ना निदान उसका हो सकता है।
1: बिल्कुल सर, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है सर?
0: बहुत अच्छा ये प्रश्न है। देखिए, प्राकृतिक खेती का मतलब जो हमारे किसान के घर पे जो संसाधन है, जो है ना गोमूत्र है, उसके गाय का गोबर है, मतलब प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, सब जो है ना मतलब फसल पोषण जो है ना सब अपने को किसान को अपने घर पे ही जो है ना तैयार करना है। और जैविक खेती में क्या है कि अपने को बाहर से जो ना केंचुए की खाद बाहर से ले सकते हैं, सड़ी गोबर की खाद आप बाहर से ले सकते हैं, जैव उर्वरक जो है जैसा समाज जी के ट्राइकोडर्मा हुआ, सूडोमोनास हुआ, एजोटोबैक्टर हुआ, ठीक है, ये सब आपको जो है ना आप बाहर से ले सकते हैं। लेकिन आप जो है ना प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, जैविक खेती में तो आप बाहर से ले सकते हैं ये सब चीजें जो आपको मैंने बताया, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो अपने घर पे ही जो संसाधन है उसी से फसल पोषण जो है ना आपको तैयार करना है।
1: जी, प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है सर?
0: देखिए, ये अपने को देखिए आज के समय में क्या है किसान बंधु, सब हमारा किसान चाहता है कि हमारा परिवार जो है ना स्वस्थ रहे, ठीक है, जो हमारे घर का बच्चा है वो स्वस्थ रहे। लेकिन स्वस्थ कब होगा, जब हम उसको जो है ना स्वस्थ जो है ना भोजन देंगे। और स्वस्थ भोजन कब मिलेगा, जब हम अपनी जमीन को स्वस्थ भोजन देंगे, मतलब जब हम अपनी जमीन को अपने घर पे जो संसाधन है जीवामृत देंगे। जब हम अपने जमीन को जीवामृत देंगे तो हमारी जमीन क्या होगी, हमारे जमीन में जीवों की संख्या बढ़ेगी। जब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो कुछ भी हम जो है जब जमीन को पोषण देंगे तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो क्रिया करके ज्यादा से ज्यादा पोषण फसल को उपलब्ध जो है ना कराएगा। फिर जमीन में जल धारण क्षमता, हमारी जमीन जो है ना पोली होगी, जब हमारी जमीन पोली होगी तो हमारे जमीन को जल धारण क्षमता जो है ना बढ़ेगी हमारी जमीन की। जब जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो हमारी जमीन को पानी नमी जो है ना लंबे समय तक जो है ना संरक्षित रहेगी, तो हमारे जमीन को पानी जो है ना कम देना पड़ेगा। तो इस वजह से किसान बंधु आप सबसे निवेदन है कि आप जो है ना प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। कम से कम यदि आप अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती करें, अपने रिश्तेदार के लिए प्राकृतिक खेती करें, कम से कम आप जो है ना 1 एकड़ तो आप ठान लें, शपथ ले लें कि हमको 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करना है, देसी गाय पालना है।
1: बिल्कुल साहब। तेज प्रताप जी, चलते चलते किसान भाई को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं किसान बंधुओं से करबद्ध निवेदन यही है हमारा कि आप जो है ना कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पर एक देसी गाय पालिए और उस देसी गाय के गोबर, देसी गाय का गोमूत्र का उपयोग करके आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़िए कि हमारी आने वाली हम अपनी पीढ़ी को, जिस तरह से हर आदमी ये चाहता है कि हम अपनी पीढ़ी को कुछ दे करके जाएं, तो आप भी ये प्रयास कीजिए कि आने वाला जो हमारी आपके नीचे की जो पीढ़ी है हम उसको जो है ना शुद्ध और उपजाऊ जमीन जो है ना पीढ़ी को जो है ना दे करके जाए।
1: बिल्कुल। किसान भाइयों, अपने प्रोग्राम में जानकारी देने के लिए पधारे हैं तेज प्रताप सिंह जी, जो हैं विशेषज्ञ मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टांकड़ा। अपने जानकारी ली प्राकृतिक खेती का महत्व एवं उद्देश्य, अपने प्रोग्राम में आए और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
2: और धन्यवाद कोरो कोनी देव अश्विनी भाई। तो गीत के साथ देशा
1: बिल्कुल।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।

0: गोरबंद नखराड़ो और एक अशी परंपरा जी में अपना जो ढांडा ढोरे बांको भी श्रृंगार कियो जावे बांको भी ध्यान राखियो जावे है। और अश्विनी भाई ध्यान तो राखनो पड़े है टेम को भी
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कहो ना भगत का बाया ही मोती निपजे है और समय सारू सब काम होना चाहिए। गीत की लहरा में आपा अशा लहर लहर लहराया कि टेम को पतो ही कोनी चाल्यो किसान वाणी कार्यक्रम रो टेम पूरो होते जा रहे है। तो फिर अब चालनो है आपने अगला कार्यक्रम की तैयारी कर छन, तो अबार लेवा विदा और करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म फर्ज के इस गीत के साथ। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम से। गीतकार हैं समीर और संगीत है निखिल विनय का।

0: एक लड़की थी दीवानी।
1: लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहब्बतें से। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है जतिन ललित का।

उदित नारायण और हरिहरन की आवाज़ में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम साथ साथ हैं से। गीतकार हैं मिताली और संगीत है राम लक्ष्मण का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म चोर मचाए शोर से। गीतकार हैं इंद्रजीत सिंह और संगीत दिया है रविंद्र।

अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो की आवाज़ में फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत में आज आप सुनेंगे गाथा।

गयो तो सहाय। अब घुरतनी और मैं खा

0: जातक को बंगल सिंह महाराज कहां के लिए चलो जाते हो रूंध में शिकार करने के लिए। ए दोनों भाई घूमता फिरता हुआ ये भी ए काला पहाड़ने के उतर के नी ए कहां के नटनी का बारा में के निकल के वापस ए कहां पहुंच जाए ये भी रूंध में। हाथी पे मंगल सिंह महाराज बैठे सुबह साधक सूरज नारायण जी निकल रो ए फौज पीछे पीछे ए घूम रही ए महाराज के जैसे दोनों भाई निगाह परास सिल के ऊपर खड़ा हो जाए देख करके ये बोला हमारो महाराज आगो अपना महाराज को ओ स्वागत में कुछ दे ए जानना ए चांदी का 21 रुपया निकाल के दोनों भाई और इंडिया के स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे स्वागत के लिए खड़े हुए दोनों भाई महाराज के निगाह पड़ो ए उन्हें जवान भेजा जवान पूछकाओ कौन जवान है वाले पूछी कौन हो नगर साहब हम घोचड़ी देखो बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई बुलाओ मैं आ रहा हूँ अभी। महाराज अपने हाथी कहो दे बोलो पहलवान सु बढ़ा हाथी को और इनके जवानन के पास लेके चल। जैसे जवान के पास आ जाते नहीं मंगल सिंह महाराज को दोनों भाई सलाम करते हैं अन्नदाता सलाम ओ राम राम राम कृष्ण होने के बाद में 21 रुपया महाराज की नजरानी में पेश करते दोनों भाई। वो बोले बहुत अच्छे बेटा मैंने तुम्हारा नाम सुना मैं बहुत खुश हूँ मेरे से और राज में दो ऐसे जवान मुझे बहुत खुशी है। पहले जमाना में राजा महाराजा पहलवान अंशु योधांशु खुश होकर आज की तरह ना दुनिया चिड़े ओ वैसे ही मरवा दिए उन्हें आगे पीछे दुनिया ने लगा दिए काय को थोड़ो सो छोरो पाम निकाले वादा निकाले ऐसे करें कि जो ओझू को आगे को बढ़े ही वो जमाना ना हाँ पहले चाहवे लोग बाग जवानों को इज्जत करते थे महाराज देख करके खुश हो जाते हैं। मेरे जाने महाराज बोलो बेटा एक बात है मैंने आपकी ये भी ले ली मैं बहुत खुश हूँ तो मेरे मेरे मेरे और पास बैठने वाले और आपका चाचा है जो उसके भतीजे हो उमराव के तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे लेकिन मैंने आपकी एक सिफारिश सुनी है ये बोलो महाराज। महाराज तो बोले क्या सुनिए महाराज बताओ क्या मैंने सुने दोनों भाई आपस में बंदूक की गोली
1: मिलाते मिला के बताओ
0: मुंह को दिखा दो मिला के दिखा दो तुम्हें बहुत और खुश होंगे मेरे दिल में तसल्ली हुई हाँ मेरे जवान ऐसे कुछ है मेरे इसमें रियासत ओ जानना मंगल सिंह महाराज राजा इन्हें देख के दिल में गयो सिहाय मैं नाम लियो रब को दोनों भाई ने आपस में गोली दई
1: मिला है
0: ऊपर नीचे का फरान में खड़ो हो जाए गुलटड़ी ऊपर हो जाए और मैं खा नीचे
2: हो जा
0: दोनों भाई एक नजर करने में ये आपस में बतलाया महाराज ने बात सच्ची सोची पर ठीक है भाई

0: पाकिस्तान होते जिस वक्त सब ने इकट्ठा होके नी मत उपायो ए पूछ के नी आसु कौन ने ए मंगल सिंह महाराज ने के भाई आपको भतीजो और ऐसे ऐसे धूमस कर रहा खोए हमारा राज में ऐसा ना होना चाहिए तो सब ने एको करो इन्हें कही इन्हें बुला के लाओ कहां से जाके बुला कर लेगा इन्हें ए ककरा रासु धाग मल के तेरे है क्या दोनों भाई ए वहां ले जा करके भाई खोला में गंजी पकी बीच गड़ो सालार भाई खुदा बीच में ले दियो रानी मोसी ने मांग भी लिया
1: हथियार
0: जानना या की बात सुन के भाई तेरी बातें तू ही जान कैसे लायो ए जैसे या नहीं म्यासु कही तो या के पुरानी बात याद आ जावे कौन के घुरचड़ी थे ए जैसे हमारे संग बहुत इन्हें धगो करो रानी साहब जब हमने लाया ए हम गंजी खान को बैठा ओ तेपट जो फर्श बिछड़ी वाई में हम दोनों भाई और गेंद वेंद कर दिया ओ खींच के बांध दिया रस्तान सुर गाड़ी में पटक दिया ए मेरो भाई तो छोड़ के नहीं चलो कौन तो ए जैसे याने हाथ निकालो टेपट में सु चक्कू निकाल के निकाट के नहीं तो कूद के नहीं भग जावे एक लकौनिया में ए घुरचड़ी रह
1: जावे
0: नौखा कहन लगो बट तेरी पड्डा किसी खाल बदन को कहिए मोटो दुनिया कहवे सांच सांप गंडी को
1: फोटो
0: बट जैसा उड़ो तू हो बीरा ऐसा उड़ा होता हम बट पहले घाणो घालता बीरा हम पीछे भी लेता
1: दम
0: ए बाद में बात कर दो पहले मैं तोए थोड़ा तो ओ कह के या की बात है ई तो जानना छोड़ के री कह दे कौन या सु घुरचड़ी के बीरा तू ही छू चलो जा और अब तू पे मैं ना छुड़ायो जासू या लेके कहां जाते मंगल सिंह महाराज की कचड़ी जैसे मंगल सिंह की महाराज की कचड़ी में लेके आया रानी साहब ने या सू पूछी जाने आलू बता दी ई बात है भाई तो छू राज सभी का पच गया हाथ तू उनके नहायो भाई सुन घुरचड़ी तो सु कहू कैसे तू एक मेव भी पकड़
1: लायो
2: लायो
0: भाई खोला में गंजी पकी बीच गड़ो सालार इन्हें खुदा बीच में ले दियो मोसू मांग भी लिया एक में कह करके राजा ना

0: कमन च वही मंगा दे और जे माना को उमरा और सालो संग खंडा दे। ए रानी सुन रानी तो सु कहूं सुन ले मेरी बात रे सेवे पंडू लड़ा बैराट में मेरा तू देख भी हमारा हारा मेरे जब देख मैं कैसो कैसो झुझा दियूं ओ कैसो जोधाऊं। ए बोली बेटा मैंने ऐसे ही सुनी तो सुबह से ही कह दी मैं तेरा दर्शन की कौनसी आप मेरे ही नागे बहुत अच्छो बेटा बेटा और मैंने आपका दर्शन कर लिया। ओ वो बहुत खुशी है महाराज तो कहती है महाराज ओ ऐसो
1: वीर
0: ओ जोधा ऐसो ओ बलंकारी ऐसो सामंत हमारी रियासत में
2: नहीं है।
0: पहले राजा महाराजा खुश हो क्रिया अपना जवानन ने देख कर जैसे महाराज ने आकर देखना की
1: सूरवीर पैदा
0: हुआ सूरवीर की सुनी रानी ने आकर सिफारिश करी ये बोलो ए तो फिर मैं तो मेरी बात सुनियो जान नया ने कहा काम करो ए रानी तेरी बात मैं बिल्कुल ए ना गिराऊं तेरी बात मानू लेकिन कौन पीछे सु अंग्रेज और अंग्रेजन सुने जो काम करो है कौन सो राजा ना क्या बता देता है।

महाराज रानी से, रानी मेरी मजबूरी है, आऊ पर्ची मांग रहा है भाई। अलवरगढ़ का राज में नहर दो भाई, ने तार काटो हो अंग्रेज को, जान में मेरी सारी रियासत पूरी रियासत में सो भोगो मुखो। ओ अंग्रेज को फोन आयो टनाटन, गन गन टन टन सन सन करते हुए, मेरी पूरी रियासत पड़गो। ए कौन नहीं काम करो, बहुत दिन में जाके इनकी मुंह पतो लगी, और जब पतो लगी अंग्रेज नहीं है मांगे हुए मुझे, इसलिए वापस इनको भेजनो। मैं मानू ये सामन थे झुझारी है मेरा है का जोधा है, लेकिन क्या करूं मुझे देने पड़ेंगे। तो जानना क्या ए दोनों भाई ने कौन अंग्रेज के क्या सुप्रत करते है, कौन है घुसड़िए लाहौर के लिए भेजते क्या।

0: कौन ने वही फाइल उठाई? कौन ने महाराज? महाराज महाराज ने फाइल उठा के खोल के देखे, रानी से कहने लगो, ये अंग्रेजन का तार को जब ही करी गौर, संग्र चालो भेज के घर चुड़ीदा दिन पहुंचा दिनो है। लाहौर लाहौर के लिए आए, भेज देता है लाहौर में, जैसे ही दार पहुंचो कौन ए अंग्रेज कर्नल देख लो ए जवान, सुबह परेड कर रहा जैसे यार ले जाके पहुंचा, ए देखे तो वही जवान जो जादना बंदूक के लेके नहीं गयो, तो ये है वो आदमी, तो ये वो आदमी है जो दुनिया से देखा था, ये क्यों बड़ा नाम इस आदमी का अंग्रेज के लगा कर, ये बहुत बड़ा आदमी ओ देख करके, ओ अंग्रेज भी वाह वाह वाह क्या जवान है क्या नाम है, देख करके ओ एक घाको एक खंबा के बांध दियो जा कौन और घोचे
1: उड़ा
0: ओ क्या जानना

0: कदम निकाल गए।
1: राजा दिल तंबू भीतर धस गयो है। अरे आग सुया देऊ

0: आया।
1: ए, कौन जैसे क्या के नहीं पहुंचो, कहां छू अलवर छू, ए जवान लेके गया खंबा के बंधो पड़ो, कौन घोड़े चढ़ी, ए बात नहीं वही वक्त, ए उसी वक्त कान तंबू में आग लग जाती है, कौन के, ए कर्नल साहब का
2: लगी तंबू में आग,
1: ए कर्नल साहब का तंबू में जैसे आग लगी जच्चा, और वहां में मैडम वहां के घसू अंग्रेजनी पड़ी हुई, ए जादी लगी तंबू में आग जब ही कर्नल घबरायो, ए जादी धसो तंबू के बीच बचा याको लायो, ए जो रब ने लिखी, ए जो रब लिख दे वो मिटना की नहीं होती, जब ना जो जब संग निशानो भेज दे

दिन कौन ने वही फाइल उठाई, कौन ने महाराज मारा ने फाइल उठा के खोल के देखे रानी से कहने लगो, ये अंग्रेजन का तार को जब ही करी गौर, संग चालो भेज के घर चुड़ी जा दिन पहुंचा दिनो है लाहौर, लाहौर के लिए आए भेज देता है। लाहौर में जैसे ही जार पहुंचो कौन ए अंग्रेज कर्नल देख लो ए जवान सुबह परेड कर रहा जैसे यार ले जाके पहुंचा ए देखे तो वही जवान जो जादना बिंदु के लेके नहीं गयो, तो ये है वो आदमी, तो ये वो आदमी है जो दिन यहाँ से देखा था, ये क्यों बड़ा नाम इस आदमी का अंग्रेज के लगा के। ये बहुत बड़ा आदमी ओ देख करके ओ अंग्रेज भी वाह वाह वाह क्या जवान है क्या नाम है देख करके ओ एक घाकू एक खंबा के बांध दियो जा कौन और ओ, क्या जानना ऊपर वाला की मेहर होती है कर्नल साहब का तंबू में लाड़ी

0: क्या के नहीं पहुंचो, कहां छू अलवर छू, ए जवान लेके गया खंबा के बंधो पड़ो कौन ढोले चढ़ी, ए बात नहीं वही वक्त, ए उसी वक्त कान तंबू में आग लग जाती है कौन के, ए कर्नल साहब का
1: लगी तंबू में आग,
0: ए कर्नल साहब का तंबू में जैसे आग लगी जच्चा, और वहां में मैडम वहां के घरसू अंग्रेजनी पड़ी हुई, ए जादी लगी तंबू में आग जब ही कर्नल घबरायो, ए जादी धसो तंबू के बीच बचा याको लायो, ए जो रब ने लिखी, ए जो रब लिख दे वो मिटना की नहीं होती, जब ना जो रब ने आके लिखी, ओ याने जादिन पड़ती नहीं आ झट या उठा के दिया तो इसको बचा लेता, ए जाना याने और मैडम लई बचा, ए तंबू भीतर धस गयो रब ने करी सहाय, लेके बाहर आ गयो जानू मैडम लई बचा, ए मैडम जैसे बाहर लेके आयो आने के बाद में जच्चा बच्चा ने दोनों ने, ए कर्नल साहब खुश हो जाए, ओ जवान तो भाई जवान क्या बात है, इसको मरने का तो कोई डर ही नहीं, ए किसी से पूछन ताछा ओ या मैं आग में कूद पड़ो, ओ वाह जवान जा तेरे पर मैं खुश हूँ, मोल मांग क्या मांगता है, ए ये बोलो रे महाराज जा मैं मांगू वा तुम को
1: ना दे दो
0: क्यों ना, ए जाने कही मैं जा चीज मांगू जिन जिन का बोल खून माफ हो जाएगा जितना मैं चाहूँ, ए रुक जा हो जाएंगे, अब बता जिन जिन का नाम बता पहले, जाने नाम पूछा, ए ये बोलोगे नहीं ऐसा नहीं होता सरकार के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करते, ए पर जा तेरी मेरे ए जो तेरे ऊपर ये सजा है इसको मैं कम करता हूँ, याने कम करना की कही, ये बोलो महाराज मेरा तो और कोई आगे की बात समझ में ना आवे, क्यों के जा मैं चाहूं वा तू ना देवे, जा तू देवे वा मैं ना चाहूं, तो भाई सो जैसे वो पहे में तो वैसे ही है गुजार लूंगो, और जो तू चाहे वाह कर, चाहे वो काला पानी भेज और चाहे तुम वो हीन जेल में पटकीरा,
2: अभी आप गफरुद्दीन मेवाती और साथियों की आवाज में सुन रहे थे घुड़चड़ी मेव खान लोक का था, और इसी के साथ लोक संगीत का हमारा एक कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत

0: स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं। हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज, अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि

0: जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
3: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँच रहा है।
5: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये मिल रहे हैं।
6: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें DBT के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपये मिलता है।
4: इस साल अगस्त तक DBT के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। DBT ने बिचौलियों की

0: भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews.hindi को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में 10 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: अब सुनिए रविंद्र जैन के गीत संगीत निर्देशन में हेमलता और शैलेंद्र सिंह का गाया गीत, फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से।

काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ।

सोला साला तंदान है तेरे ख्याला चंदान, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए हाय सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
3: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या हुआ?

0: ऐ तेरे ख्याला चंदाना ये गोरे गाला चंदाना ये रेशमी बाला चंदाना ये सोला साला चंदाना ऐ तेरे ख्याला चंदाना हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईबी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए रुपया।
1: दोस्तों इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।

0: भैया
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान।

ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा।

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी, और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
1: वनकम जी,
2: ओ पहुंच जाइए ना।
1: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए, खिड़की बंद करना।
2: क्या है?
1: खिड़की बंद करना जी।
2: क्यों?
1: ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता ना।
2: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
1: आइए आइए, पहले बोला ना ऐसा बात। डाई बोला तुम आना गाना गाना आना।
3: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना।
1: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहे गाना गाना।
4: चल
1: देवी, तुम बदाना बदाना।
0: दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक

ಕಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋರೆಗಳೇ.

0: यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
0: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है। देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, में बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। मैं हूं साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि मैं हूं साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
3: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाइलाइट्स कैप्सूल।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शान से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड।

0: और यही नहीं, उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने एक स्वर्ण और एक रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रहीं। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल, जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days and something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें, तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
3: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग

0: Singh contingent put on explosive performances, locking in three major medal outcomes. In the women's 65 kg semi-final, Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbey. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbey. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation, his second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
1: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख, यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुँचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है। नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गयी। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
3: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज़्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ।

0: जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के युडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भांबरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन उसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
2: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। टू सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tie break to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
0: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में, तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगु कैसी रही, जानते हैं अभिनव से।
2: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
0: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरतेहाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्काटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं कि इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने 7वें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में, तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति

0: सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
2: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप, आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
0: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
3: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है। कुछ दर्द भरी स्मृतियां होती हैं, कुछ खुशगवार, कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान हो जाता है। कुछ दर्दीली स्मृतियां हमें सहलाती भी हैं, कुछ प्यारी स्मृतियां हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं प्यार भरे गीत।

0: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका की 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर

0: की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। इतना कि तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार, खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है, मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 621 रजत 24 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाश